सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आज दिन है गुरुवार, सक संबद 1948, अश्विनी महीने

आज दूसरी तिथि और अंग्रेजी वर्ष 2026 की आज सितंबर महीने की 24 तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं राजेश दत्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे आज की पहली सभा में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आपसे कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

0: के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। श्रोताओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले चलिए जानते हैं आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे अब से कुछ ही देर में 6:10 पर। सबसे पहले आपको सुनाएंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम और उसके पश्चात 6:30 पर आप सुन पाएंगे वोमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग। 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर आज का दिन साइंस प्रोग्राम आज आप सुन पाएंगे यानी विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम 7:30 पर और 8 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात। देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम का समय रहेगा 8:15 का और 8:30 पर आप सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

दोस्तों उसके पश्चात 8:40 पर आप सुन पाएंगे सुरो की रंगोली कार्यक्रम और 9:15 आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुन पाएंगे पुआर आंचलिक बातोड़ी। उसके पश्चात समय रहेगा स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों का। 9:15 पर सबसे पहले आज आप सुन पाएंगे खेलमा कार्यक्रम में खेलमा भक्ति गीत और इसके गायक कलाकार रहेंगे मार्गरेट खेलमा और उनके साथी। 9:25 में आज आप सुन पाएंगे रांगखोल कार्यक्रम के तहत रांगखोल आधुनिक गीत जिसके प्रस्तुतकर्ता रहेंगे साइनोडी रामदिनथर बैंकहेंग और उनके साथी। जनता कार्यक्रम का समय रहेगा 9:35 का और उसके दौरान आज आप सुन पाएंगे मेलंग भलंग प्रिंगी और उनके साथी द्वारा प्रस्तुत जयंता भक्ति गीत। साथ ही हमारे आज की पहली सभा की अंतिम स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में 9:45 पर आज आप सुन पाएंगे ललथन मोजी नम्पोई और उनके साथी द्वारा प्रस्तुत बेते भक्ति गीत। 10:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का और इसका जायजा ले पाएंगे शाम के 5:00 तक। इसी बीचों बीच समाचार और मुख्य समाचार जारी रहेगा। दोपहर 2:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और उसके तुरंत बाद 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। श्रोताओं ये थी हमारे आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची। FM 88.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम के साथ। आज है गुरुवार, चलिए माँ लक्ष्मी के भजन के साथ आरंभ करते हैं आज के दिन की।

दोस्तों आप आनंद ले रहे थे भक्ति गीतों के कार्यक्रमों का, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे ओमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग्स। चलिए आनंद लेते हैं इस पहले गीत का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे रोमांसेंटिक फिल्म सॉन्ग्स। अभी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जनसेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। इनमें से 1,170 महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारत नाविकों की जल्द स्वदेशी वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमनिंग तियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन एरिगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोता, आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। सुबह के 7:05 हो चुके हैं, यानी समय हो गया है आज का दिन कार्यक्रम का। इससे पहले चलिए सुनते हैं आज का पोएम ऑफ द डे, और इसके करता है निहारिका दत्ता।
2: इस कविता का नाम है

साल, नया साल नई उमंगे, जागा नया विश्वास। नया साल फिर से ले आया एक नया एहसास। बीते समय की बात छोड़ दे, बुराइयों से नाता तोड़ ले। किसी पीटी न रहे जिंदगी, इसको भी एक नया मोड़ दे। प्रेम करुणा की हवा में ले पाए सभी फिर सांस। नया साल फिर से ले आया एक नया एहसास। श्रोताओं, इस कविता के कवि है सत्यनारायण सत्तर। नमस्कार।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं 24 सितंबर की ओर, जहां हम जानेंगे इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक ऐतिहासिक घटनाएं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म और स्मृति तिथियां। चौबीस सितंबर का दिन भारत के सामाजिक इतिहास, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी विकास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर 2014 में भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक बड़ी उपलब्धि रही थी। तो आइए जानते हैं 24 सितंबर के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों के बारे में। आज के दिन सन 1726 में EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर्स कोर्ट्स स्थापित करने का अधिकार मिला। इन अदालतों को नागरिक मामलों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। वर्ष 1798 में यूनाइटेड स्टेट्स में अटोर्नी जनरल का पद और उसका कार्यकाल स्थापित किया गया। यह अमेरिकी संघीय न्याय व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना एक्ट हुआ। इस समझौते में तत्कालीन बातचीत वर्गों के लिए वंचित वर्गों के लिए प्रत्यय वित्तनाशाओं में प्रतिनिश्चित से जुड़े प्रावधान तय किए गए। वर्ष 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना हुई। आगे चलकर होंडा ने ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल उद्योग में दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। साथ ही वर्ष 1968 में स्विट्जरलैंड, जिसे आज एस्टोनिया के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस का सदस्य बना। वर्ष 1974 में गुनिया विजाओ ने पोर्टुगल से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह उसके स्वतंत्र राष्ट्र बनने की ऐतिहासिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण था।

वर्ष 1990 में ईस्ट जर्मनी ने वर्सो पैक से अलग होने की प्रक्रिया पूरी की, जो उस समय यूरोप में बदलते राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा था। वर्ष 1996 में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT को हस्ताक्षर के लिए खोला गया। इस संधि का उद्देश्य सभी वातावरणों में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट और अन्य न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पर रोक लगाना है। वर्ष 2010 में प्रसिद्ध उर्दू शायर अखलाक मोहम्मद खान शरियार को 44वें जनपद अवार्ड और मलयालम साहित्यकार ONV कुरुप के 43वें जनपद अवार्ड के लिए चुने जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2014 में भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान ने सफलतापूर्वक मार्स की ऑर्बिट में प्रवेश किया। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला पहला देश बना और एशिया का पहला देश भी बना जिसने यह उपलब्धि हासिल की।

दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। अब जानते हैं 24 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। वर्ष 1856 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और संपादक प्रताप नारायण मिश्रा का जन्म हुआ। वे भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकारों में गिने जाते हैं। वर्ष 1861 में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख महिला नेता भिखाजी कामा का जन्म हुआ। उन्होंने विदेश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज को मजबूत किया। साथ ही वर्ष 1922 में अमेरिकी जज, लेखक और इतिहासकार फ्लॉयड लेविन का जन्म हुआ। उन्होंने जज संगीत के इतिहास और कलाकारों पर महत्वपूर्ण लेखन किया। वर्ष 1940 में भारत के प्रसिद्ध तैराक आरती शाह का जन्म हुआ। वे भारतीय तैराकी के इतिहास की प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल थी। वर्ष 1950 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर मनिंदर अमरनाथ का जन्म हुआ। वे 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे और फाइनल में उनके प्रदर्शन की विशेष भूमिका रही। दोस्तों, अब जानते हैं आज के दिन निधन हुए कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम। वर्ष 1859 में नाना साहेब जिन्हें धुंधु पंत के नाम से भी जाना जाता था, के नेपाल में निधन की सूचना दर्ज हुई। हालांकि उनके अंतिम समय और मृत्यु को लेकर ऐतिहासिक स्रोतों में मतभेद है, इसलिए इसे निश्चित तथ्य के रूप में देखा नहीं जाता। वर्ष 1978 में प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक भूपति मोहन सेन का निधन हुआ। उन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2006 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और भारत रत्न नृत्यांगना पद्मिनी का निधन हुआ। उन्होंने 250 से अधिक भारतीय फिल्मों में काम किया और तमिल, मलयालम, हिंदी, तेलुगु तथा कनाडा सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। श्रोताओ, आज एक बहुत ही खास दिवस पालन किया जा रहा है और वो है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। समुद्री पर्यावरण और समुद्रों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ये दिवस। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO से जुड़ा है। हर वर्ष एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। समुद्री दुनिया के व्यापार और परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दुनिया के देशों के बीच बड़ी मात्रा में सामान

जहाजों के जरिए पहुंचाया जाता है, इसलिए सुरक्षित शिपिंग समुद्री पर्यावरण की रक्षा, नाविकों की सुरक्षा और प्रदूषण को कम करना इस दिवस के प्रमुख उद्देश्य है। वर्ल्ड मैरिटाइम डे हमें यह भी याद दिलाता है कि समुद्र केवल व्यापार का माध्यम नहीं बल्कि पृथ्वी के पर्यावरण और करोड़ों लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए समुद्रों के स्वच्छ को स्वच्छ सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो श्रोताओ, ये थी 24 सितंबर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक ऐतिहासिक घटनाएं, साथ ही उन प्रसिद्ध व्यक्तियों की यादों जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, खेल, कला और समाज के अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दिया। आज का दिन हमें खास तौर पर यह संदेश देता है कि इतिहास केवल पुरानी घटनाओं का संग्रह नहीं है, इसमें वैज्ञानिक उपलब्धियों, सामाजिक बदलावों और उन लोगों की मेहनत की कहानी भी शामिल है जिन्होंने अपने क्षेत्र में नई राह बनाई। और 2014 का मंगलयान हमें यह याद दिलाता है कि बड़े लक्ष्य, मेहनत, वैज्ञानिक सोच और निरंतर प्रयास से हासिल किए जा सकते हैं। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे इतिहास के एक और महत्वपूर्ण दिन के साथ कल सवेरे ठीक 7:05 पर। इसी के साथ ही चलिए अभी आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम। वैसे तो दोस्तों विज्ञान हमारे हर कदम पे रहता है और गणित भी। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ होती है, हम देखते भी हैं, शायद इनमें से कुछ बातें हम जानते भी हैं और कुछ समझते भी हैं। और कुछ फैक्ट्स आज मैं ऐसे भी बताऊंगा जो आप सभी जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। छोटी छोटी बातें हैं पर कार्यक्रम में आपको मज़ा ज़रूर आएगा। आप भी जानेंगे हमारे आसपास होने वाले हर एक चीज़ में साइंस कैसे छुपा होता है।

दोस्तों आरंभ करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले बात करते हैं चाय से, क्योंकि हम भारतीय लोगों की दिन की शुरुआत ही चाय के साथ होती है। और जब चाय बहुत गर्म होती है तो उसकी सतह से गर्मी गर्म चाय में फूंक मारने से वो जल्दी ठंडी क्यों होती है, वैसे तो हम सबको पता है, पर उसके पीछे छोटा सा साइंस ये है। जब चाय बहुत गर्म होती है तो उसकी सतह से पानी धीरे धीरे भाप बनकर निकलता है, इससे इवेपोरेशन कहते हैं। जब हम चाय पर फूंक मारते हैं तो ऊपर की गर्मी हवा हटती रहती है और इवेपोरेशन तेज़ हो जाती है। इस प्रक्रिया से चाय हमें तेज़ी से ठंडी पीने को मिलती है। गर्म खाना जल्दी ख़राब क्यों हो सकता है? हमारे आसपास बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। जब खाना लंबे समय तक गर्म या सामान्य कमरे के तापमान पर पड़ा रहता है तो कुछ बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इसलिए पके हुए खाने को लंबे समय तक बाहर रखने में के बजाय उचित तरीके से ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में रखना बेहतर होता है। आईने पर भाप क्यों जम जाती है? अपने अक्सर देखा होगा, ठंड भी जब पड़ती है तो कोई भी मिरर हो सफ़ेद पड़ जाती है, गाड़ी की हो, आपके घर का शीशा हो। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो पानी की भाप हवा में फैल जाती है। जब यही गर्म और नम हवा ठंडे आईने में टकराती है तो भाप छोटे छोटे पानी के कणों में बदल जाती है, इसलिए आईना धुंधला दिखाई देने लगता है। अगली बात आपके घर में रोजाना होती होगी, रेफ्रिजरेटर खोलने पर ठंडी हवा नीचे क्यों आती है, ये ऊपर क्यों नहीं आती? ठंडी हवा सामान्य रूप से गर्म हवा की तुलना में ज़्यादा भारी यानी अधिक डेंस होती है, इसलिए ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर ऊपर और नीचे थोड़ा अलग हो सकता है। मेटल यानी कोई भी धातु लकड़ी से ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है? मान लीजिए कमरे में एक लोहे की वस्तु और एक लकड़ी की वस्तु रखी है, दोनों का एक्चुअल टेम्परेचर सामान्य हो सकता है, लेकिन मेटल हमारे हाथ की गर्मी को तेज़ी से अपने अंदर ले जाता है, जबकि लकड़ी ऐसा धीरे धीरे करती है, इसलिए मेटल हमें ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। गीले कपड़े हवा में जल्दी क्यों सूखते हैं? कपड़े में मौजूद पानी धीरे धीरे बाष्प बनकर हवा में जाता है। जब हवा चलती है तो वो कपड़े के आसपास मौजूद नमी को दूर ले जाती है, इससे और पानी भाप बनने लगता है, इसलिए हवा चलने पर गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं। नमक डालने से बर्फ़ जल्दी क्यों पिघलती है? सामान्य पानी 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जमता है। जब हम बर्फ़ पर नमक डालते हैं तो नमक बर्फ़ की सतह पर मौजूद पानी के साथ मिलकर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, इसलिए बर्फ़ पिघलने लगती है। इसी कारण कुछ जगहों पर बर्फ़ हटाने के लिए भी सॉल्ट यानी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगले फैक्ट्स जानेंगे एक बेहतरीन गाने के बाद, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों चलिए जानते हैं अगला तथ्य। हम में से सबकी घर में आजकल प्रेशर कुकर में खाना ज़रूर बनती है, तो जानिए चलिए जानते हैं इसमें खाना बनती कैसे है। प्रेशर कुकर के अंदर भाप बाहर आसानी से नहीं निकल पाती, इससे कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़े हुए प्रेशर में पानी सामान्य 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर उबल सकता है, इससे खाना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पर पकता है और जल्दी तैयार हो जाता है। आपने ज़रूर देखा होगा, सेब जब हम काटते हैं वो हल्की सी भूरी हो जाती है। जब हम सेब काटते हैं तो उसके अंदर की सेल्स हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। इसके बाद कुछ एंजाइम्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और सेब की सतह का रंग धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है। इसे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहा जाता है। अगला तथ्य हम किचन में रोज इस्तेमाल करते हैं वो है प्याज। प्याज काटते समय आंखों में आंसू क्यों आता है? इसके पीछे का साइंस है। प्याज काटते समय उसकी सेल्स टूट जाती है और कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स निकलते हैं। ये कंपाउंड्स आंखों तक पहुंचकर इरिटेशन पैदा करते हैं। हमारी आंखें इस इरिटेशन को कम करने के लिए आंसू बनाती है, इसलिए प्याज काटते समय आंखों से पानी आने लगता है। अगला है फूड से रिलेटेड। गर्म चाय या खाना दूर से ही क्यों सुगंध देता है? गर्म खाने से कोई छोटे वोटाइल मॉलिक्यूल्स हवा में तेजी से फैलते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स हमारे नाक तक पहुंचते हैं तो हमारे स्मेल रिसेप्टर्स उन्हें पहचान लेते हैं। इसलिए गर्म चाय खाना या मसालों की खुशबू हमें दूर से भी महसूस हो सकती है। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू क्यों आती है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। बारिश की बूंदें जब सूखी मिट्टी से टकराती है तो मिट्टी में मौजूद कुछ पदार्थ हवा में फैलते हैं। इनमें जियोस्मिन नाम का कंपाउंड भी शामिल है।

जो मिट्टी की खास खुशबू से जुड़ा होता है। इसलिए बारिश के बाद हमें मिट्टी की एक अलग और ताज़ी खुशबू महसूस होती है। हमारी मोबाइल ज़्यादा गर्म होने पर परेशानी क्यों हो सकती है, चलिए इस पे जानते हैं। मोबाइल में बैटरी और कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। जब फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो बैटरी की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है और वह जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है। लंबे समय तक ज़्यादा हीट बैटरी की लाइफ को भी कम कर सकती है, इसलिए फ़ोन को बहुत गर्म जगह पर रखना ठीक नहीं है। साथ ही आपके शरीर से जुड़े अंग पर भी फ़ोन को कम रखें तो बेहतर, जैसे कि आपके जेब में या आपके चेस्ट के करीब जेब में फ़ोन कमी रखें। हो सके तो आप एक छोटा सा बैग कैरी कर सकते हैं या हाथ में रखें। जानते हैं आप धूप में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? सूरज की गर्मी कपड़ों में मौजूद पानी को गर्म करती है, इससे पानी के मॉलिक्यूल्स तेज़ी से भाप में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं। इसलिए धूप और हवा दोनों मिलकर कपड़े सुखाने की प्रक्रिया को तेज़ कर सकते हैं। हमारे बाल जो कभी कभी खड़े हो जाते हैं, इसके पीछे भी एक छोटा सा साइंस है दोस्तों। जब हम बालों को कंघी करते हैं या किसी कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। बालों पर समान प्रकार का चार्ज जमा होने पर वे एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, इसी वजह से बाल खड़े या फैले हुए दिखाई दे सकते हैं। जानते हैं साबुन यानी सोप गंदगी और तेल को कैसे हटाता है? हमारे हाथों पर केवल धूल ही नहीं बल्कि ऑयल और ग्रीस भी चिपके होते हैं। केवल पानी से ऑयल आसानी से नहीं निकलता। सोप के मॉलिक्यूल्स एक तरफ पानी के साथ और दूसरी तरफ ऑयल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर पानी से हाथ धोने पर यह गंदगी और ऑयल बाहर निकल जाते हैं। जानते हैं पानी की बूंद गोल क्यों दिखाई देती है? वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण के कारण पानी की सतह पर सरफेस टेंशन पैदा होता है। छोटी पानी की बूंद में यही सरफेस टेंशन उसे लगभग गोल आकार देने में मदद करता है। जानते हैं मोबाइल की टच स्क्रीन उंगली को कैसे पहचानती है? अधिकांश स्मार्टफोन में कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है। हमारी उंगली इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर सकती है। जब हम स्क्रीन को छूते हैं तो उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में छोटा बदलाव होता है। फ़ोन इस बदलाव को पहचान कर समझता है कि हमने स्क्रीन के किस हिस्से को टच किया है। पहाड़ों पर खाना पकाने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। कम प्रेशर में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ही उबल सकता है, इसलिए खाना पकाने के लिए पानी उतना गर्म नहीं हो पाता जितना समुद्र तल के आसपास और हो सकता है। इसी कारण पहाड़ी क्षेत्र में कुछ फूड्स को पकाने में अधिक समय लग सकता है। जानते हैं हमारी आवाज़ वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग में अलग क्यों सुनाई देती है? जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हमारे कान तक दो रास्तों से पहुंचती है। एक रास्ता हवा के माध्यम से और दूसरा हमारे शरीर की हड्डियों और टिश्यूज़ के वाइब्रेशन के माध्यम से होता है।
लेकिन रिकॉर्डिंग में हमें मुख्य रूप से हवा के माध्यम से आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए अपनी रिकॉर्डेड वॉइस हमें अक्सर अलग और थोड़ी अजीब लगती है। तो श्रोताओं, साइंस केवल बड़ी लेबोरेटरीज, रॉकेट और बड़ी मशीन्स में ही नहीं है, हमारे घर में, रसोई में, मोबाइल में, बारिश में और हमारे शरीर में हर दिन साइंस काम कर रहा है। अगली बार जब चाय ठंडी हो, प्यास करते समय आंखों में आंसू आए या बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आए, तो एक पल रुककर ज़रूर सोचिएगा, जो रोज़ होता है उसके पीछे भी साइंस होता है। और अपने बच्चों को भी ये साइंस ज़रूर पूछिए और बताइए। तो हमारे विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम आज यहीं पे हम समेटते हैं और जाते जाते आपको एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

0: विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम के बाद आप सुन रहे थे फिल्म गीत FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे श्रोताओं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह

0: और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए

0: दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
1: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का 3रा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी।

0: हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल दो दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
1: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, चार बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी श्रोताओ, आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं ये पहला गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से आप सुन रहे थे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ एफ एम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं।

0: दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तो ये एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप आनंद ले पाएंगे शुरू करंगुली कार्यक्रम का, और इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे मोहित चौहान जी के गाए कुछ चुनिंदे गाने।

प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंचलिक बतौरी FM 100.2 MHz पर ही आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। सुबह के 9:15 हो चुके हैं, यानी समय हो गया है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को आरंभ करने का। इस कार्यक्रम में सबसे पहले अभी हम आपको सुनवा रहे हैं खेलमा कार्यक्रम में खेलमा भक्ति गीत, और इसके गायक कलाकार है मार्गरेट खेलमा और उनके साथी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे रंग खेलमा कार्यक्रम में खेलमा भक्ति गीत, जिसके गायक कलाकार थे मार्गरेट खेलमा और उनके साथी। FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे रांगखोल कार्यक्रम में रांगखोल आधुनिक गीत, और इसके गायक कलाकार है साइनोडी रामदिनथर बांगखेंग और उनके साथी।

दोस्तों अभी आप सुन पाएंगे जनता कार्यक्रम में जनता भक्ति गीत, जिसके गायक कलाकार है मेलंग भलंग प्रिंगी और उनके साथी। अब तक आप सुन रहे थे रंगखोल कार्यक्रम में रंगखोल आधुनिक गीत, और इसके गायक कलाकार थे सिनोडी, राम दिनथर, बैंकिंग और उनके साथी।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे जनता कार्यक्रम में जनता भक्ति गीतों का। इसके गायक कलाकार थे मिलंग भिलंग प्रिंगे और उनके साथी। FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अभी आप आनंद ले पाएंगे बेते कार्यक्रम में बेते भक्ति गीतों का, और इसके गायक कलाकार रहेंगे लालथन मोइनामपुई और उनके साथी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे बेते कार्यक्रम में बेते भक्ति गीत, जिसके गायक कलाकार थे लालथन मुए नामपुई और उनके साथ ही FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। ये था हमारे आज की पहली सभा की अंतिम स्थानीय बचाव के कार्यक्रम। अभी आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इसी के साथ ही मैं राजेश दत्ता आपसे लेता हूँ विदा। आगे आपके साथ रहेंगे सुवर्णा चंदा। चलिए दोस्तों, आनंद लीजिए है विविध भारती के कार्यक्रमों का। सुबह के 10 बज चुके हैं अब।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। मेरा सारा साथ होगा।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पा वढ़ावकर से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे साथ संगीत की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद हैं। ये हैं मराठी फिल्मों के जाने माने म्यूजिशियन, अरेंजर और संगीतकार अप्पा वढ़ावकर। बहुत बहुत स्वागत अप्पा जी आपका।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: ये बताइए, विविध भारती के स्टूडियो में आके आपको क्या अनुभूति हुई?
2: बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, थैंक यू सो मच।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि रेडियो से तो आपका बड़ा पुराना नाता है, आप बचपन में रेडियो के कार्यक्रम

0: फिल्म करने जाते थे उसकी क्या याद है आपकी?
1: मेरे ख्याल से 8-9 बरस का था।
0: किस साल की बात होगी?
1: 68-69 की होगी।
0: ओ
1: तो उस टाइम एक मराठी में एक छोटा प्रोग्राम रहता था छोटे बच्चों का,
0: जी
1: गम्मत जम्मत नाम।
0: अरे बहुत ही मशहूर प्रोग्राम।
1: कि उधर मैंने वायलिन बजाया एक्चुअली।
0: बाबा
1: ज्यादा से ज्यादा वायलिन बजाया। तो मैं वायलिन सीखता था, मेरे वायलिन के गुरु प्रभाकर पंडित जी, जो फिर बाद में रेडियो पर कंपोजर वगैरह थे
0: जी,
1: तो उनसे वायलिन सीख के मैं पहले थोड़े से प्रोग्राम वो गम्मत जम्मत में बजाए थे।
0: क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपके पिताजी भी एक बड़े संगीतकार रहे हैं, तो अपने पिताजी और अपनी माँ के बारे में हमें बताइए।
1: मेरा पिताजी वैसे अच्छे हारमोनियम बजा लेते थे
0: जी,
1: ऑर्गन बजा लेते थे,
0: राम वड़ावकर जी,
1: और शायद पियानो भी बजाते थे।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मेरी शुरुआत की जो ट्यूशंस हुई उनके पास ही हुई
0: जी।
1: और जैसे हारमोनियम में हम बोलते हैं ना, जो सारे गमो समझो कि एक टेक्निकल बात है ये
0: जी,
1: कि वो सफेद एक सुर से सारे गामा अगर हम बजाएंगे तो हमारी फिंगर होती 1-2-3-4, 1-2-3-4,
0: राइट।
1: लेकिन वो दो प्रकार की फिंगर्स मुझे बताते थे जो पियानो में यूज करते हैं कि 1-2-3, 1-2-3-4-5। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है वो पियानो भी अच्छा बजाते होगी।
0: वाह।
1: फिर वो पहले प्रभात कंपनी की थी
0: जी, शांताराम जी की।
1: हाँ, स्टाफ पे वो म्यूजिशियन करके थे, वसंत देसाई के वाद्य वृंद में थे वो, क्योंकि उस टाइम 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर वहाँ रहते थे। वो तो सैलरी पे रहते थे, यानी कि गोविंद राव टेम्बे या तो मास्टर कृष्ण राव, ये वसंत देसाई
0: जी।
1: तो वो वसंत देसाई के वाद्य वृंद में थे।
0: अच्छा।
1: और उनके साथ बहुत सारा काम किया उन्होंने।
0: वसंत देसाई तो महाराष्ट्र के राज्य संगीतकार का दर्जा उन्हें प्राप्त था।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और आगे हम बात करेंगे कि कैसे आपका और उनका साथ जो बना है। अप्पा जी, पिताजी ने कई बड़े बड़े कलाकारों के गाने रिकॉर्ड किए हैं और कई प्रभात कंपनी में उनके साथ जो अनुभव हुए हैं, कुछ कुछ उन्होंने आपको बताया।
1: बाद में एक आह्लाद चित्र नाम की एक संस्था थी
0: जी,
1: दत्ता धर्म अधिकारी
0: जी
1: नाम के प्रोड्यूसर थे, जिनको हम दत्ता मामा कहते थे। तो उनके जो बहुत सारे पिक्चर का म्यूजिक डायरेक्शन मेरे पिताजी ने वसंत पवार के साथ किया था।
0: अच्छा, अच्छा।
1: वसंत पवार राम वड़ावकर, ऐसा वो जोड़ी आती
0: जोड़ी।
1: थी। जैसे कि पुराना चिमनी पाखर है, अबोली है,
0: हाँ।
1: और कुछ 2-3 हिंदी भी थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मराठी 9-10 पिक्चर्स किए है
0: जी, जी।
1: फिर बाद में मेरे याद में जो है जो रिकॉर्डिंग में गया था मैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: आशा भाई के 2-3 गाने थे, फकीरा नाम का चित्रपट था एक
0: जी,
1: में वो 62-63 में आया था।
0: ये हिंदी फकीरा की बात नहीं हो रही है,
1: मराठी फकीरा वो 62-63 का आया। और बाद में एक 64 में आया चित्रपट आया था मराठी, शोधा म्हणजे सापडेल, जिसमें सुमन कल्याणपुर ने 2-3 गाने गाए थे।
0: आपने आशा भाई और सुमन जी को देखा?
1: देखा है, बिल्कुल देखा है। उस टाइम मुझे इतना मालूम नहीं था, इतने बड़ा कलाकार है मुझे नहीं मालूम था।
0: आप तो छोटे थे,
1: 12-14 साल का था
0: जी।
1: तो उनके साथ मैंने बजाया भी है, सुमन ताई के साथ।
0: हाँ।
1: उनके जो रिहर्सल चलती थी
0: जी,
1: तो रिहर्सल्स में मुझे बजाने को बोलते थे। जिस चित्रपट में सुमन ताई गाई थी वो चित्रपट का संगीत संयोजन अनिल मोहिली जी ने किया। तो अनिल जी मुझे बोलते थे रिहर्सल में तुम बजाओ। तो उस हिसाब से मैंने उनसे साथ बजाया।
0: अच्छा, आपके हाथ में वायलिन किस बरस की उम्र में दे दिया गया था?
1: मैं शायद 12-13 बरस का था
0: तब से बजा रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि जो मेरे मास्टर जी थे वायलिन के वो मेरे पिताजी के असिस्टेंट थे, प्रभाकर
0: जी।
1: तो मेरे पिताजी ने उनको बोला, अरे इसको हारमोनियम में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा वायलिन भी सीखना चाहिए उसने, और कुछ सीखना चाहिए। तो उनके साथ मैंने वायलिन उनके पास मैंने सीखा।
0: कितने साल तक सीखते रहे?
1: 7-8 बरस तक मैंने सिखाया। 70-71 तक मैंने वायलिन का रियाज चालू रखा था।
0: और पिताजी हारमोनियम सिखा रहे थे?
1: हाँ, तो ये पहले गुरु जी मेरे पिताजी।
0: कितने सख्त थे वो?
1: नहीं, बहुत प्यारे थे
0: जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया हारमोनियम का जिक्र, वायलिन का जिक्र, पर आप तो अकॉर्डियन भी बजाते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ?
1: ये एक्चुअली क्या हो गया, मैं 72 में बीए जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया।
0: ओ।
1: और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए, तो फिर पूछा घर में कि ये क्या करता है। तो मेरे मास्टर जी थे, वो बोले हारमोनियम बजा ले।

0: है, मेरे पास वायलिन सीखता है। तो फिर वह संदेह साहब बोले कि हाँ हारमोनियम बजा लेता है, तो उसको फलाना फलाना डेट को मेरे पास भेजो। और फिर उधर गया, मैं पास हो गया, उनके हिसाब से पास हो गया। फिर 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: गजब।
0: हाँ, तो उधर क्या हुआ कि लोग आते थे, यानी जयवल कुलकर्णी है या तो शरद जामबेकर, प्रमिला दाता, रुफैया जी, वाणी जयराम। तो जयवंत कुलकर्णी, उनके साथ, जयवंत जी के साथ मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। और उनके साथ जो एकॉर्डियन बजाता था, सुराज साठे नाम का,
1: सूरज साठे बहुत
0: बढ़िया
1: बढ़िया।
0: बजाने वाला।
1: जी
0: तो
1: जी
0: जब मैंने उसको देखा तो बोली ये साज बढ़िया है, उसमें क्या इफेक्ट मिलता है प्रोग्राम में, ये वो। तो मन में कुछ ले लिया, तो फिर मैं 74 को अकॉर्डियन खरीद लिया।
1: अरे बाबा,
0: तो फिर अब 78 से मैं बार बजाने लगा सीख के।
1: अच्छा,
0: पहले मैंने ऑडिशन भी दी थी रेडियो की,
1: अरे बाबा,
0: 78 में मैं ऑडिशन पास हो गया रेडियो की।
1: जी,
0: हाँ, तो वहाँ से फिर अकॉर्डियन शुरू किया। तो शायद 80-82 तक, जब तक मैं कीबोर्ड नहीं मेरे पास आया, तब तक अकॉर्डियन बजा रहा था।
1: मैंने एक और चीज जो पढ़ी है आपके बारे में कि कॉलेज रुइया में पढ़े आप, और पढ़ाई करने तक आपके मन में ये तय नहीं था कि जीवन में आगे क्या करना है।
0: बिल्कुल, जब मैं 72 में वसंत देसाई के आ गया,
1: हाँ,
0: तब मेरा फाइनल हो गया कि मैं करियर करूंगा तो इसमें
1: और
0: करूंगा।
1: ये बैंक वाला मामला क्या था?
0: बैंक की परीक्षा देनी पड़ती थी ना,
1: हाँ, तो आपने बहुत मेहनत की, तैयारी की उसकी।
0: तैयारी की थी, लेकिन बिकॉज मेडिकली अनफिट हो गया मैं
1: जी,
0: मेडिकली। तो दो तीन बैंक में ट्राई किया तो बोले ये तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला नहीं इधर। और ये मौका मिल गया वसंत देसाई जी के उधर जाने का, तो वहां से फिर हो गया कि मैं म्यूजिक करूंगा।
1: वाह, वसंत देसाई का जिक्र हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहां दो आंखें 12 हाथ फिल्म का एक गाना अपने सुनने वालों को सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल
1: वसंत देसाई की याद के नाम,
0: बिल्कुल
1: ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ठीक है।

0: एक सुर एक ताल नाम का।
1: हाँ
0: ये उसका ये तो मोटो ऐसा था कि समझो कि पाठ्य पुस्तक के जब मराठी पाठ्यपुस्तक है ये तो समझो एक कविता है देवा तुझे कितनी सुंदर आकाश। तो ये जो कविता है तो उस टाइम क्या होता था कि समझो कि बालमोहन स्कूल का म्यूजिक टीचर है वो अपने हिसाब से उसकी ट्यून बनाता था। पार्ला का एक आधा स्कूल है तो उसके हिसाब से वो मास्टर ट्यून बनाएगा। छाना पूना ऐसा जो अलग अलग ट्यून बनते थे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कुछ। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो गाने में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की है कैंपेन चालू किया कि एक सुर एक ताल यानी कि किधर का बच्चा भी एक साथ आए और एक कविता गाने को बोले तो एक ही ट्यून में गाए एक ही ताल में गाए।
1: क्या बात है।
0: तो ये कैंपेन में मैंने 8 बरस काम किया उसमें।
1: और वसंत देसाई के साथ फिर महाराष्ट्र के गांव गांव
0: जिले जिले में गांव गांव में हम लोग घूमते थे
1: जी।
0: और उधर क्या होता था कि वो क्या बोलते हैं शिविर कैंप जो होता था वो समझो कि सोलापुर में गए हम लोग तो उस एरिया के म्यूजिक टीचर्स उधर बुलाते थे
1: जी।
0: समझो 200-250 लोग होंगे वो गाने सीखेंगे 3 दिन में जो कुछ होगा 3-4-5 गाने जो होगा वो आप अपने स्कूल में जाके सिखाएंगे अपने बच्चे को और फिर एक बड़ा सेमिनार लेके वो गाने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और कैसा क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छा कैंपेन था एक्चुअली मास सिंगिंग बोलते हैं उसको।
1: वाह वाह। और समूह
0: गान
1: पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र में ये एक
0: मेरे ख्याल
1: चला
0: से
1: था।
0: मेरे इसमें वही मालूम है कि महाराष्ट्र में ये हुआ था।
1: उसी दौरान क्या वसंत देसाई ने महात्मा गांधी का एक भजन कंपोज किया था हे नम्रता के सागर आपको कुछ याद है?
0: वो एक्चुअली भजन नहीं है
1: जी
0: वो एक्चुअली कहावत है ऐसे कि वो गांधी जी ने जेल में एक पत्र लिखा था
1: यस।
0: और पत्र को वसंत देसाई जी ने वो ट्यून बना के जैसा लगता है गाना ही है
1: मन्ना डे ने गाया
0: था। बहुत अच्छा तर्ज उसका हुआ था।
1: तो आप उस वक्त वसंत देसाई के साथ थे?
0: नहीं नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं था
1: जी।
0: मैं जाने के पहले वो रिकॉर्ड हुआ था।
1: अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि वसंत देसाई के साथ इतना ज्यादा अनुभव आपका है और वो एक बहुत ही अप्रतिम संगीतकारों में से रहे हैं उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं याद आती हैं जिनका जिक्र आप करना चाहें?
0: एक्चुअली एक बात मेरे बारे में इतना मैं लकी हूँ
1: जी
0: कि मेरे जो चित्रपट के जो पहला गाना यानी समझो कि हिंदी का पहला गाना जो मैंने बजाया
1: जी
0: एज अ म्यूजिशियन
1: जी
0: वो वसंत देसाई का म्यूजिक।
1: वाह।
0: शक नाम का चित्रपट था।
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: शबाना आजमी विनोद खन्ना वगैरह काम
1: हाँ, हाँ, हाँ। वो गाना कौन सा था?
0: वो अभी ना पर्दा गिराओ करके।
1: वाह वाह वाह। जेके बैनर्जी ने गाया था।
0: यस काका जी हम लोग उसके बोलते थे
1: जी।
0: तो वो गाना बजाने का मुझे मौका मिल गया वो वसंत देसाई का था।
1: गुलजार साहब के बोलते अभी ना पर्दा गिराओ ठहरो कि दास्तां अभी और भी है।
0: क्या बात है। मराठी का पहला चित्रपट गाना मैंने वसंत देसाई साहब का बजाया।
1: क्या बात है।
0: और वो गायक कौन था तो पंडित भीमसेन जोशी जी।
1: ओ
0: भारत रत्न।
1: वाह वाह वाह।
0: इतना अभी ये आते कांटा रोंचे आते मुझे
1: जी। तो जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तनाव था?
0: तनाव तो था क्योंकि इधर का भी पहला रिकॉर्डिंग उधर। अच्छा पहले वो हिंदी का इतना तनाव ना था क्योंकि हमें रिहर्सल बहुत किए थे वो काका जी के साथ
1: जी, जी।
0: कम से कम 15 रिहर्सल किए थे।
1: वाह।
0: लेकिन और क्या वो रिकॉर्डिंग ऐसा हेडफोन लगा के मैंने बजाया था
1: जी
0: काका जी का पर लेकिन पंडित जी का जो गाना बजाया मराठी का वो ऐसा सामने पंडित जी बैठे मैं इधर बैठा हूँ।
1: अरे बाप रे।
0: वो गा रहे और क्या उनका आवाज
1: कंठ क्या गजब था।
0: बढ़िया बढ़िया
1: है ना। गाना याद है कौन सा था वो?
0: वो रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: आप गा के बताइए।
0: रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग रात्रन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग आगे का वर्ड्स आता नहीं ये चंद्रकोंस में बांधी हुई चीज थी।
1: वाह।
0: और बढ़िया गाया था।
1: क्या बात है। सुंदर याद आपने हमारे साथ साझा की है। और चूंकि शक फिल्म के गाने का जिक्र किया है
0: हाँ।
1: तो वो गाना सुन लेते हैं
0: बिल्कुल।

0: बहुत सुंदर बातें आपके साथ हो रही हैं अप्पा जी, और आप आगे चलकर म्यूजिशियन से म्यूजिक अरेंजर कैसे बने ये कहानी हमें बताइए।
1: पहला म्यूजिक अरेंजर ऐसे काम किया तो मैंने स्टेज पे किया था
0: जी।
1: तब क्या हुआ कि एक मैं एक ग्रुप कर रहा था, सब वैसा मैं थोड़ा सा इधर काम किया, वसंत देसाई के साथ, उसी रामचंद्र के साथ काम किया, तो थोड़ा सा मैं सीनियर था उनमें, और नोटेशन मुझे आती थी और उन लोगों को कुछ नोटेशन नहीं आता था। तो अचानक वो जिम्मेदारी मुझे पड़ गई कि इनको सब संभालो एक साथ, तो अरेंजर उधर ऐसे ही बन गया। तो फिर बाद में क्या होगा कि मैं सोचता था कि अरे मतलब क्रेडिट्स में मेरा नाम नहीं आता था, और सिंगर्स के नाम आते, वो इधर इसका नाम आया उसका नाम है, म्यूजिक अरेंजर का नाम नहीं। तो मैंने सोचा कि चार सिंगर हैं, वो पांच पांच छः छः गाने बिठाएंगे गाएंगे, लेकिन मेरे को 25 गाने बिठाने पड़ते हैं
0: जी,
1: और वो सब म्यूजिशियन से काम करना लेना, तो मेरा काम भी ज्यादा है ना।
0: हाँ।
1: तो क्रेडिट्स में आना चाहिए नाम, तो मैं करते गया कि हमारा भी नाम आना चाहिए आना चाहिए, तो तब से वो नाम आने लगा। तो ये क्रेडिट मैं लेता हूँ कि ये मेरे से शुरू हुआ
0: म्यूजिशियंस के नाम आने जो है, उसकी कोशिश
1: अरेंजर का
0: बहुत बड़ी बात।
1: वहां से फिर किसी ने सुना कि ये लड़का अच्छा काम करता है, तो किसी ने मेरे को, पहला तो दूरदर्शन मैंने बहुत बजाया
0: जी जी,
1: और वहां तक कुछ नाम नहीं, लेकिन क्या समझो कि यूनुस भाई आए, तो समझो शब्दान चपल्ली का कार्यक्रम होता था, पांच गाने हैं, तो आपने दो गाने का किया अरेंजमेंट और तीन गाने का, फिर वो प्रोड्यूसर बोलेगा अरे अप्पा जरा ऐसे करुण टकना अरेंजमेंट जरा, तो फोकट का अरेंजमेंट करते, अलग का पैसा नहीं मिलता वो फोकट का, तो ऐसा अरेंजर बन गया था मैं 77 को।
0: अच्छा, एकदम
1: दूरदर्शन का पहला प्रोग्राम मैंने 74 में बजा है वसंत देसाई के साथ।
0: अच्छा, वहां उन्होंने क्या परफॉर्म किया?
1: वो एक शिवराज्यभिषेक हुआ था, 300 शिवराज्यभिषेक 74 में, 6 जून 74
0: जी।
1: तो रायगढ़ पर वसंत देसाई जी ने गाना सादर किया था, उसका रिकॉर्डिंग उधर हुआ था
0: दूरदर्शन,
1: तो वो पहला उधर भैया मैंने
0: जी। और उसके बाद आप धीरे धीरे अरेंजर बनते गए।
1: पहला कैसेट मैंने बजाया होगा जब कैसेट का जमाना आएगा 79-80 को
0: जी,
1: तब से मेरा वो चालू हो गया काम।
0: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सुधीर फड़के हों या स्नेहल भाटकर हों या फिर वसंत देसाई हों, यशवंत देव हों, इन सब के साथ आपने काम किया है, तो कुछ यादें हमारे साथ बांटिए।
1: एक तो वसंत देसाई के साथ मैंने अरेंजमेंट का काम कुछ नहीं किया, उनके पास सेबेस्टियन जी
0: और वहां पर बजाते थे,
1: लेकिन उनका मैं देख रहा कि उनका जो पेशेंस था ना
0: जी,
1: बढ़िया पेशेंस था, यानी कि समझो गाना सिखाया और अभी आशा जी और ये छोड़ दो, लेकिन जो स्कूल में हम लोग जाते थे ना सिखाने को, एक सुर एक ताल, एक गाना वो एक लाइन 10 बार 12 बार बोलते थे कि मैं सिखाने को तैयार हूँ, तुम सीखने को तैयार हो जाओ। वो कंटालते नहीं थे, वो बहुत पेशेंस था, वो पेशेंस जो चीज है, और वक्त पे जाना।
0: वाह,
1: 9 बजे का रिकॉर्डिंग होता

0: था उस टाइम, वो 9:15 बजे वसंत देसाई जी स्टूडियो में हाजिर थे।
1: वाह,
0: वो एक अच्छा, मुझे ये लगा कि टाइम पे जाना चाहिए। ये दो चीज़ें वहाँ से अच्छी मिल गई मुझे। यशवंत देव के पास मैं जब गया, जो उनका पहला अरेंजमेंट का काम मैंने किया, तो उनका एक आदत था कि वो गाने का नोटेशन लिखते थे और वो ताल में बार टू बार लिखते थे नोटेशन। तो सब गाने वाने उस टाइम क्या करता था मैं, थोड़ा सा आग की वजह से मैं उधर लिखता नहीं था, वो कैसेट पे रिकॉर्ड करके लेता था सब गाने। तो उनके गाने मैंने रिकॉर्ड कर लिए, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट भी दे दी गाने की, अब तुम्हारे लिरिक्स की, और उसके नीचे नोटेशन लिखा हुआ।
1: जी
0: तो मैं बोला कि मेरे पास अभी गाने हैं ना रिकॉर्ड किए, तो ये क्यों चाहिए मुझे। तो बोले नहीं, जब तुम समझो कि चार अंतरे का गाना है, पहला तीसरा इसके ट्यून सेम है, 1/3 और 2/4 ट्यून सेम है, लेकिन ऐसा मत करना कि फर्स्ट अंतरे का जो म्यूजिक बजाएंगे आप वही थर्ड को बजाना, क्योंकि फर्स्ट अंतरे का कंटेंट और थर्ड का कंटेंट अलग हो सकता है। फर्स्ट में हैप्पी होगा तो थर्ड में दुखी भी हो सकता है।
1: लेकिन आमतौर पर लोग यही करते थे कि M1 जो है वो M3 में डालते थे, M2 M4 में डालते थे।
0: हाँ, तो पहले ऐसा ही करता था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऐसा मत करना, स्क्रिप्ट सामने रखो,
1: जी
0: उसका अर्थ मीनिंग समझा लो। अगर सेम जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर
1: हाँ,
0: मीनिंग डिफरेंट है तो तुमको दूसरा अगला कुछ करना पड़ेगा।
1: वाह,
0: तो तब से जो मैंने मेरे में सुधारणा की, जो एज फार एज पॉसिबल
1: ये उनकी
0: जो,
1: बदौलत हुआ।
0: हाँ यस, उनका जो एक शब्द प्रधान गायकी, यानी शब्दों के हिसाब से उच्चारण होना चाहिए, उनका एक खासियत है यशवंत देव साहब का, उस हिसाब से मेरा शब्द प्रधान म्यूजिक अरेंजमेंट ऐसा हो गया उस टाइम से।
1: क्या बात है, सुधीर फड़के की कोई याद बांटिए।
0: अरे अरे, सुधीर फड़के का तो बहुत है, उन्होंने एक ही पिक्चर का हम लोग अरेंजमेंट किया उनका, मैं
1: जी
0: और सुराज सठे।
1: हाँ
0: तो ये गाने के अरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे, उनके घर में ही बैठे थे
1: जी
0: मैं और उनका बेटा श्रीधर।
1: जी
0: तो गाने का हम लोग के हिसाब से अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया, ऐसा हम लोग का लगा।
1: हाँ
0: तो बाबूजी को बोला कि सुनिए, उसको पास कर दीजिए, ओके कर दीजिए, या तो उसका फाइनल नोटेशन लिखने में जरा। तो उन्होंने आग बंद करके वो हमारे अरेंजमेंट जो कुछ है सुन ली, बोले बहुत बढ़िया किया है। हमको लगा कि यार क्या शाबाश की मिल गई हम लोग को, लेकिन बाद में बोले इसमें मेरा गाना किधर है,
1: अरे बाप रे,
0: तुम्हारी अरेंजमेंट ऊपर जा रही है मेरे गाने पे,
1: गाने के ऊपर चढ़ गई
0: चढ़
1: है।
0: गई है ना, मेरा गाना गया किधर,
1: अरे अरे
0: तो
1: अरे,
0: मेरा गाना नहीं है, तो ये गाने के लिए ये नहीं चलेंगे, ये और किसी के गाने को लगाओ आप, इसके लिए अलग टाइप, थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया, ये टाइप ये टाइप ये टाइप करो। तो फिर बाद में हम लोग,
1: पूरा
0: लेकिन
1: काम फिर
0: ये,
1: से
0: हाँ,
1: किया।
0: तो ये मिल गया ना कि
1: हाँ,
0: बाबा गाने पे चढ़ना नहीं चाहिए,
1: सपोर्टिंग होना चाहिए।
0: सपोर्टिंग चाहिए,
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: इतने बड़े आदमी है वो क्या।
1: बल्कि आपने तो श्रीधर फड़के के साथ भी काम किया है।
0: हाँ, उनका ओंकार स्वरूप एल्बम है, सुरेश वाडकर ने गाया हुआ, सुपर
1: जी
0: डुपर हिट है,
1: एकदम एकदम,
0: तो उसका पूरा अरेंजमेंट मेरी है।
1: क्या बात है, और वो तो बहुत आज भी घर घर में बजता है।
0: ये हाँ, और उनका श्रीधर जी का और एक बढ़िया एल्बम आशा जी ने गाया हुआ,
1: हाँ
0: ऋतु हिरवा नाम का।
1: जी,
0: तो एक्चुअली वो एल्बम का पूरा अरेंजमेंट श्यामराव कामले करने वाले थे,
1: हाँ
0: बड़ा अरेंजर। तो लेकिन चार गाने को उन्होंने अरेंजमेंट करके हमको दिल लिख के दिया, उधर भी मैं और सूरज, क्योंकि
1: अरे वाह
0: अब एक बार मैं भूल गया बोलना, पहला अरेंजमेंट हम लोग ने किया ना जो,
1: जी,
0: तो एक साथ किया हम लोग ने उज्जवल सूरज नाम से,
1: अरे वाह वाह
0: फिर बाद
1: वाह,
0: में अलग अलग करने लगे, पर
1: क्योंकि
0: पहले,
1: जो आपका मूल नाम है,
0: हाँ
1: आपको सब लोग
0: उज्जवल,
1: अप्पा
0: हाँ मेरा
1: कहते
0: नाम
1: हैं।
0: उज्जवल है
1: जी
0: और उसका सूरज,
1: वाह
0: तो
1: वाह,
0: उज्जवल सूरज नाम से हम लोग ने काफी काम किया।
1: लेकिन कितना सुंदर है उज्जवल
0: और
1: सूरज।
0: ये मौका हम लोग, पहला अरेंजमेंट का मौका हमको दिया कवि शांताराम नांदगांवकर, मराठी के जाने माने कवि है
1: जी
0: शांताराम नांदगांवकर जी,
1: अच्छा,
0: उनका एक कुछ टीवी का काम था जिसमें सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति ऐसे लोग गाने वाले थे, अनुराधा पौडवाल वगैरह,
1: हाँ,
0: उसमें ये गाना इन्होंने भी गाया था, यशोदास ने भी गाया था।
1: वाह,
0: तो वो पहला मौका उन्होंने दिया, तो ऐसा तो काम चलते रहा।
1: जी, बल्कि मुझे ये पता है कि आपके नाम पर एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में आपने चार बड़े आयोजन बजाए।
0: चार बड़े फुल प्रोग्राम यानी कि साढ़े तीन घंटे के, यानी पहला में 11 बजे परेल का दामोदर हॉल है।
1: नहीं लेकिन मुझे इसकी पूरी भूमिका बताइए, ये कैसे हुआ कि एक ही दिन में इतने सारे कार्यक्रम होने लगे?
0: मेरा एक साथी बजाने वाला जो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा बजाता है, रिकॉर्डिंग नहीं बजाता है, अनिल गोसावी नाम, तो मुझे बोलता था आज मैं 3 शो बाजू ले। मैं बोला 3 शो कैसा बजा सकता है, रिदम वाला है, उसका स्टेमिना क्या होता है, तो मुझे भी कभी मौका मिले
1: जी
0: तो मैं भी बजा लूं। तो एक दिन मौका आ गया कि 11 बजे परेल में, 3 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर, अलग अलग प्रोग्राम, यानी कि सप्तरंग नाम का प्रोग्राम 11 बजे बजाया, 3:30 बजे अशोक हांडे का मंगल गाणी दंगल गाणी नाम का बड़ा
1: बहुत मशहूर,
0: फिर 8:30 बजे अरुण दाते और अनुराधा पौंडवाल उनका शुक्र तारा बजाया, और रात को 1:30 बजे वो एक हमारे पास एक उत्सव होता है साई बाबा का, उधर हिंदोले स्वरांचे नाम का बड़ा प्रोग्राम बजाया
1: एक ही दिन में।
0: हाँ, और सबके संगीत संयोजन, 3 प्रोग्राम के संगीत संयोजन मेरे थे।
1: टेंशन नहीं हो रही थी यहाँ से वहाँ भागना है, ट्रैफिक है ये सब?
0: तब इतनी, अभी ये 91-92 की बात है।
1: जी जी,
0: तब इतनी सारी भीड़ भी नहीं थी वैसे, और साथ में एक म्यूजिशियन की गाड़ी थी जो कॉमन था मेरे साथ तो वो आसान हो गए। तो उस दिन एक दिन में मेरे ख्याल से मैंने 130 गाने बजाए।
1: अरे बाप रे, एक दिन में 130
0: गाने बजाए, और वो विदाउट एनी नोटेशन, वो सब बाहर नोटेशन, क्योंकि मुझे क्या नोटेशन पढ़ने को इतना लंबा का दिखता नहीं है।
1: जी जी,
0: तो वो सब मुझे मेमोराइज करना पड़ता है।
1: ये तो और कमाल की बात है कि इतना सारा आपने सब कुछ आपकी स्मृति में रह गया।
0: एक बरस तो मैंने हमारे मराठी में विसुभाऊ भापट नाम के हैं।
1: जी जी,
0: तो एक ही स्टेज पे मैंने एक दिन में 5 बजे फुल घंटे पर, रविंद्र नाट्य मंदिर में पहला शो सुबह 6:30 बजे, दूसरा 9:30 बजे, तीसरा 3:30 बजे, चौथा 6:30 बजे, और पांचवा रात्र 9:30 बजे।
1: अरे बाप रे,
0: एक स्टेज पे फुल।
1: ये स्टैमिना कहाँ से लाते हैं आप?
0: तब था ये भी 20-30 बरस पहले की बात है।
1: क्या बात,
0: अपने आप को मैं ये देखता था कि मैं बजा सकता हूँ क्या।
1: आप चुनौती देते थे?
0: मुझे ही देता तुम, बोला कि फिजिकली थोड़ा सा थकान होती है।
1: जी, हमने सुधीर फड़के जी को याद किया तो उनका एक गाना सुनते हैं,
0: ज्योति कलश। सुनिए,
1: बिल्कुल वही सुनेंगे, ज्योति कलश चलते।

0: अब्बा जी, इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं और आपके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो शाहिर साबरे के साथ है।
1: बिल्कुल,
0: उसके बारे में बताएं जरा।
2: वो शाहिर साबरे का लड़का मेरा देवदत्त, वो मेरा फ्रेंड।
0: अच्छा,
2: तो उनके पहले तो कुछ काम मैंने किया था
0: जी।
2: और शाहिर साबरे मेरे पिताजी को अच्छा पहचानते थे।
0: हाँ हाँ,
2: क्योंकि पिताजी के पिक्चर का जो मैंने जिक्र किया ना फकीरा, उसका एक फोक का गाना था
0: जी,
2: देवी का गाना, वो शाहिर जी ने गाया था, साबरे जी ने
0: जी।
2: तो उस टाइम तो उनको मालूम था अप्पा ये लाव रामबाव का लड़का है। तो फिर और मेरी उनका एक बड़ा दूरदर्शन ने प्रोग्राम किया महाराष्ट्र की लोकधारा। तो एक तो वो प्रोड्यूसर जी थी किरण चित्रे, उसको हम लोग ताई बोलते थे, किरण ताई। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, साबरे साहब ने अपने देवदत्त ने भी मेरा नाम सजेस्ट किया अपने पिताजी के पास कि आपको कोई काम देना हो जाएगा अच्छा
0: जी।
2: और तब से उनका बहुत काम किया मैंने और सीखने को खूब मेरा फोक म्यूजिक
0: जी,
2: एक एक एक एक जो समझाते थे वो, ये ऐसा है, ये क्यों है तो ऐसा है, क्यों है ऐसा है।
0: वाह,
2: तो बहुत सारा मिल गया उधर से।
0: जब फोक म्यूजिक की बात हो रही है तो हाँ, कोड़ी गीत आपने किए आनंद चिंदे मिलिंद चिंदे वाले?
2: हाँ, कोड़ी गीत किए, लेकिन वो जो वैसा होकर के जो कोड़ी गीत ज्यादा पॉपुलर हो गए
0: जी,
2: वो मैंने नहीं किए।
0: अच्छा,
2: वो ज्यादा पॉपुलर हो गए आनंद शिंदे के वगैरह, कोरी गीत इतने पॉपुलर नहीं हो गए।
0: हाँ,
2: उनके जो पॉपुलर हुए एक गणपति के गाने पॉपुलर हुए
0: जी, तो एक पूरा दौर था।
2: हाँ, क्या हो गया उस टाइम मुझे कंपनी के 5 कैसेट्स मिलते थे कॉम्प्लीमेंट्री, और बहुत कैसेट सब लाया था मैंने, ओंकार स्वरूपा घर में लाया, बैणा भैया, XYZ।
0: मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप जंबो जेट गा रहे हैं।
2: हाँ,
0: वो क्या है?
2: आशीर्वाद में एक गाना था
0: जी,
2: रेलगाड़ी नाम का।
0: हाँ,
2: अशोक
0: कुमार दादा मुनि ने गाया।
2: तो वो सुन के, मेरा एक फ्रेंड है अभी बड़ा पत्रकार है मराठी में, उसका बहुत सारा फॉलोइंग है
0: जी,
2: भाऊ तोरसेकर नाम का।
0: हाँ,
2: यानी उसके अभी सब्सक्राइबर 9-10 लाख है।
0: हाँ,
2: हम लोग कॉलेज, वो रूपारेल का लड़का, मैं रोहिया का।
0: हाँ,
2: लेकिन दोस्ती हो गई।
0: हाँ,
2: वो गाना रेलगाड़ी सुन के उसको, और तब जम्बो जेट आया था नया नया, 67-68 वो जमाने में, तो उसको बस ये हो गया, कुछ लिखा तो अच्छा गाना हो गया वो। तो पहले वो गाता था, फिर वो जब पत्रकार हो गया तो गाना छोड़ दिया तू, और लास्ट नियरली 50-55 ईयर्स वो मेरे प्रोग्राम में मैं गाना गाता हूँ।
0: अच्छा।
2: हाँ,
0: तो वो तो हम सुनेंगे आपसे, जब बल्कि आप तो आशीर्वाद का गाना भी बड़े चाव से गाते हैं, आपको क्यों इस गाने से बहुत लगाव है?
2: इतना एक अलग टाइप का गाना है वो,
0: वसंत देसाई।
2: हाँ, वसंत देसाई का एक अलग एक्सपेरिमेंट है, यानी कि उसके पहले मैंने कैसा जो रैप सुना नहीं था
0: जी जी,
2: ये जो रैप आ गया तो बहुत मजा आ गया सुनने में।
0: अच्छा,
2: और बोलने में वो जो
0: इतना, और आपको पूरे याद भी है?
2: याद भी है, लेकिन क्या है एक ब्रीद में बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते हैं।
0: हाँ,
2: ब्रीदिंग का जो उसको मास्टरी चाहिए
0: जी। सुनाइए ना प्लीज,
2: अब इतनी ब्रीदिंग मेरी रहेगी इतनी मालूम नहीं, ट्राई करता हूँ।
0: यस,
2: रेल गाड़ी को चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक, अरे धड़क भड़क लोहे की सड़क, धड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, पुलाए चाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा दान हरा मैदान, बूढ़ा किसान मंदिर मकान, चाय की दुकान, अरे पिलपक दंडी, केले पे झंडी, पानी का कुंड, पंच का चूर्ण, झोपड़ी झाड़ी, खेती वाड़ी, बादल दुआ मोटा, कुआ कुएं के पीछे, बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल के घाट, हर गांव में मेला, भीड़ जे मेला, टूटी दीवार, तट सवार, रेलगाड़ी। ये बहुत लंबा एक,
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अब जंबो जेट सुनाइए।
2: तो जंबो जेट का थोड़ा सा मराठी होने से वो थोड़ा सा जी मेरे लिए आसान है।

0: अरे जंबो जेट सोई, जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वाचलो पुन्हा भेट, जंबो जेट सोई। अरे घराला धडक दाराला सडक, पकडली गाडीने निघालो तडक, विमानतळावर ठोकतोय तर आणि भारत सोडून काढतोय पळ। उंच आकाशामधले ढग चमकून पाही सारे जग, भेदून गेले एक विमान पंखावरती होऊन ताण, पंखाला त्या पंखे होते विमानाला शेपूट होते, वायुसागरी तरते बेट, जंबो जेट सोई।
1: वाह वाह
0: ऐसे
1: वाह,
0: छह स्टाम्स है वो उसके
1: शानदार है ये तो, बड़ा लोकप्रिय हुआ।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। और का प्रोग्राम हो जाए तो, एक बार पुणे में प्रोग्राम था सुरेश वाडकर का,
1: जी,
0: तो उनका महोत्सव होता था 3 दिन का,
1: हाँ
0: और 3 दिन अलग आर्टिस्ट, एक दिन रविंद्र साठे था, दूसरे दिन उत्तरा केळकर, तीसरे दिन सुरेश वाडकर,
1: जी
0: और तीनों में मैं था।
1: हाँ, आप अरेंज कर रहे थे, आप बजा रहे थे।
0: नहीं बजा रहा, तो मैं तब कीबोर्ड बजाता था,
1: जी
0: तो उत्तरा केळकर के साथ बजाने को गया, तो वो जो पब्लिक है उन्होंने पहले कहीं सुना था वो गाना मैंने
1: हाँ
0: गाया हुआ, तो फरमाइश आ गई, तो कॉम्पेयर बोला ये गाना है फरमाइश। मैं बोला और लोगों के प्रोग्राम में अच्छा नहीं है, एथिक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं दे, तो मैं बोला नहीं कुछ भी बोल दो मैं नहीं गाऊंगा। दूसरे दिन रविंद्र साठी के प्रोग्राम में फिर फरमाइश आ गई,
1: अरे
0: उस टाइम भी मैंने मना कर दिया। सुरेश वाडकर के प्रोग्राम में
1: हंगामा हो गया।
0: हाँ 2, 5, 10, 15 चिट्ठी, तो सुरेश के पास चिट्ठी दिया वो कॉम्पेयर ने,
1: हाँ,
0: तो कैसा बोलते, अरे अप्या अप्या बोल,
1: वो बहुत मजाकिया
0: हाँ
1: भी
0: मजा
1: है।
0: की बिल्कुल,
1: अरे
0: अप्या अरे बाबा काय ते जम्बो जे जम्बो केवड़ा चिट्ठे आल्या गा वा तू गा, वो खुद बोला, तो
1: क्या
0: मैंने उस टाइम वो गाया था उधर।
1: नजारा होगा वो,
0: अरे क्या
1: वाह।
0: वो खुद खुश हो गया, अरे क्या बात है बोल, तो क्या तेरा दमछा क्या है, बोले
1: अच्छा,
0: याददाश्त भी अच्छी है बोला।
1: मुझे एक बात बताइए कि आपने वो स्वरलिपि वाली जो किताब लिखी है उसके पीछे क्या रीजन था।
0: वो मराठी ऑर्केस्ट्रा बहुत करता था मैंने ना,
1: जी
0: अच्छा अप्पा वड़ाकर एक नाम हो गया उधर स्टेज
1: हाँ
0: पे, कि वो क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे, क्या कर रहे हैं कुछ पूछते भी थे, वैसा मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, लेकिन जिसको कुछ समझो कि कुछ आया था आपको कुछ आया क्या क्या फलन है, तो उनको समझ आना एज अ सीनियर, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे कि कुछ नोटेशंस की हम लोग को मालूम नहीं है वो, तो अभी हर एक को मैं कहाँ लिख के दूँ, तो एक प्रपोजल आएगा क्या पुस्तक ये करने का, और वो मेरे गुरुजी के पास गया, प्रभाकर पंडित जी के पास गया कि ऐसा ऐसे आपको को बोलो ना नोटेशन का बुक ये करते हैं, वो मना कर रहे हैं, तो पंडित जी ने अभी गुरु का ही बोला रे कर दो ना, मतलब मराठी में बोला मास्टर मेरे लिए त्रास हो तो नहीं मैं हेल्प करूँगा, बोले तू लिख इनिशियल मैं चेक करता हूँ पूरा, तो ऐसे वो हो गया। 30-35 गाने का कुछ किया था,
1: जी
0: उसमें मैंने एक किया था कि और कुछ गाने हो गए समझो भक्ति गीत भावगीत एक्स वाई जेड,
1: हाँ
0: लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना चाहिए,
1: हाँ
0: उसका नोटेशन भी मैंने उसको ऐड किया था,
1: क्या बात है, सुंदर
0: वंदे मातर और जनगण
1: जी।
0: मन।
1: मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का,
0: बिल्कुल
1: तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए, हिंदी।
0: आर डी बर्मन का,
1: हाँ
0: तो मुझे है ना उनके बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसन का अपन बोलेंगे ना वो,
1: एक चतुरनार,
0: हाँ एक अलग टाइप का गाना है, और दोनों गायक ने इतना अच्छा बढ़िया गाया है ना,
1: जी
0: तो वो सुनेंगे
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: सुन।

ಯ ಕಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನೆ.

0: ಗೋಳ ಬೋಲ್ಲ ಯಾ ಚತುರ ಬೋಲ್ಲ ಗಾ
1: ಚತುರ ನಾರಿ.

0: तक गया।
1: अपा मैं अब आपसे पूला देशपांडे की याद चाहता हूं। उनके साथ आपने काम किया और एक बड़ी अच्छी याद है आपकी।
2: उनका एक एनसीपीए का प्ले था
1: जी,
2: उन्होंने लिखा हुआ, वामन केंद्रे का उसको डायरेक्शन था और उसका म्यूजिक डायरेक्शन था जाने माने हमारे मराठी के अशोक रानडे नाम के
1: जी,
2: बहुत ज्ञानी आदमी। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए दो ही म्यूजिशियन थे, एक कीबोर्ड और इसमें मैं,
1: हाँ,
2: और रिदम में देवदत्त साबड़े, शायर साबड़े का लड़का
1: जी।
2: तो रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ, फ्लूटिस्ट भी एक्चुअली था,
1: हाँ,
2: लेकिन वो थोड़ा लेट आऊंगा ऐसा बोल के, कुछ रिकॉर्डिंग थी सुबह, तो वो बोले चलो हम लोग इनके पीसेस लेते हैं, रिदम का और अप्पा को जो कुछ कुछ है वो लेते हैं। तो हम लोग ने 11 बजे शुरू किया रिकॉर्डिंग वो एनसीपीए में, वो स्टूडियो में, और 1:30 बज गया, हम लोग कम से कम 12-13 पीस रिकॉर्ड हो गए। और वो अंदर से आवाज आई, चलो अभी थोड़ा लंच करते। अभी ये पहले मुझे मालूम नहीं था कि अंदर पूला देशपांडे बैठे हुए सुन रहे रिकॉर्डिंग पूरा। और जो अंदर से आ गए तो अरे भोरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी के साथ में, सामने मैंने 2.5 घंटा बजाया, कैसा क्या बजाया मालूम नहीं। तो आए, वाह अप्पा खूब छान। ऊपर आए, इंस्ट्रूमेंट था मेरा, तो मराठी में बोले तुमसे है यंत्र हाताड़ू का थोड़ा सा थोड़ा, मैं बोला आपको क्या बोले थोड़ा सा, उनका हाथ मेरे कीबोर्ड के लग गया।
1: वाह।
2: फिर बाद में क्या, लंच के टाइम उसके बाद फिर भी फ्लूटिस्ट आया नहीं
1: जी,
2: तो अशोक जी रानडे जी रुके थे कि फ्लूटिस्ट आएगा, तो पुल देशपांडे बोले रुके क्यों, बोले आया नहीं फ्लूटिस्ट, आपा बजा सकता है क्या इंस्ट्रूमेंट पे, हाँ आ सकता है, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो बजवा लो इससे अच्छा बजा रहे। तो पूरा वो नाटक का पूरा जो कुछ बैकग्राउंड का मेलेडी था वो मैंने बजाया था।
1: वाह वाह वाह, कितना अच्छा अनुभव ये।
2: तो और दूसरी एक अच्छी बात है कि उनका जो एक मराठी में जैसे हम लोग पॉडकास्ट बोलते हैं ना, वो उनकी जो कथा ही है वो खुद बोलते हैं, उनका बहुत सारे वीडियो आए, तो उसके पहले कुछ टाइटल ट्यून चाहिए थी। तो हमारा मित्र है अभी नहीं है वो, आनंद था मोड़क नाम का
1: जी जी,
2: उन्होंने वो ट्यून कंपोज की और वो पूरा म्यूजिक मैंने कीबोर्ड पे बजाया, वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हुआ, रिहर्सल चालू हुई और पूला देशपांडे अंदर आ गए और मेरे बाजू के कुर्सी में बैठ गए और मेरे को बहुत टेंशन आ गई, इतना बड़ा एक खुद अच्छा हारमोनियम बजाते थे ना
1: जी जी,
2: और बड़े हारमोनियम
1: जी,
2: तो बोले फिर भी हो गया मेरा काम, अच्छा हो गया, उनकी शाबाश की मिल गई, बड़ा आदमी है।
1: वाह वाह क्या बात है। अच्छा आप YouTube पर कुछ वीडियोस जारी करते हैं,
2: हाँ,
1: पंची गप्पा,
2: हाँ,
1: ये आइडिया कहाँ से आया था और इसमें तो आप तकरीबन शतक बना चुके हैं।
2: हाँ अभी 100th एपिसोड मैंने अभी डाला, एक 4-8 दिन हो गया अभी
1: जी, तो ये तो सेंचुरी हो गई भाई।
2: हो गई वो एक्चुअली क्या कोरोना के टाइम क्या हो गया,
1: हाँ,
2: मेरे एक मित्र है प्रशांत ठाकरे नाम का
1: जी,
2: अच्छा म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है और टेक्नीशियन अच्छा है, तो वो बोला अरे तेरे पास इतना बोलने के लिए इतना काम किया है, तू ये कर ले ना। मैं बोला इसमें से मेरे को 0% आते है, कुछ मालूम नहीं। तो बोला मैं हूँ नसीर, तू आ मेरे घर में आ, मेरा सेटअप है, तू बोलते जा, बाकी पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन जो कुछ होगा अपलोड करने का भी सब मैं करूंगा।
1: अरे गजब।
2: अरे वो पैसा कितना लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बोला
1: हाँ।
2: तेरे को आने जाने में जितना लगेगा, खाने में लगेगा उतना ही, और तेरा पैसा मेरा पैसा कुछ नहीं है।
1: अरे गजब।
2: तो वो चालू हो गया, फिर अभी 100 एपिसोड हो गए मेरे।
1: देखते,
2: और वो
1: देखते।
2: एक योगा योग की बात है कि मेरे माँ का जन्म शताब्दी वर्ष चालू है अभी,
1: हाँ हाँ,
2: तो उसका एक प्रोग्राम मैंने किया था सावरकर हॉल में
1: जी,
2: बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, तो वो एपिसोड मैंने 100 एपिसोड है मेरा।
1: हाँ वो आपने YouTube पे डाला,
2: हाँ,
1: है
2: YouTube पे डाला
1: जी। 100 एपिसोड, लोगों का क्या रिस्पांस है?
2: रिस्पांस ऐसा अच्छा है, लेकिन व्यू टाइम मेरा बहुत कम है
1: जी जी,
2: यानी मेरा अभी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है।
1: अच्छा, हाँ, अभी उसका इंतजार।

0: इन तो जरा भी, अभी एक्चुअली मेरा क्या है, ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन में इसको कर रहा हूँ।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण काम है, आप अलग अलग लोगों को उसमें याद कर रहे हैं,
0: क्योंकि जिसको फायदा हो जाए उसको फायदा हो जाए,
1: कहानियां सुना रहे हैं
0: हाँ,
1: सब चीजें।
0: क्योंकि मैं बोलता हूँ कि बाबा ये गाना अरेंज किया तो उसके वो अरेंजमेंट के लिए मेरी क्या सोच थी।
1: हाँ अच्छा, अभी मैं आपको एक गाना याद दिला रहा हूँ सुरेश वाडकर के एल्बम का, मन है खुड़े कसे।
0: हाँ वो देव साहब का एल्बम है, यशवंत देव का पूरा सोलो है, सुरेश का 8 गाने का सोलो है वो।
1: जी
0: उसमें एक तो मुझे 3 गाने में वायलिंस, ग्रुप वायलिंस, क्योंकि
1: हाँ।
0: मराठी के इसमें कैसेट के लिए ग्रुप वायलिंस मिलते नहीं है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: बजट बढ़ जाता है ना, 10-12 वायलिंस लगाने पड़ते हैं, नहीं तो इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन इसमें मिल गए, वो काम करने में बहुत मजा आ गया, कोरस का यूज करने को लिए मजा आ गया। एक तो ट्यून्स बहुत अच्छी है देव साहब की, लिरिक्स अच्छे है जो जो कवि के है वो, और सुरेश ने बहुत अच्छा गाया, बहुत
1: बहुत लोकप्रिय है।
0: हाँ। वायलिंस के तीन गाने जो है वो मुझे, तीनों गाने उस पे, एक वो गाने पे मैंने वीडियो भी बनाया उसमें,
1: अच्छा,
0: हाँ एक एक एपिसोड वो गाने पे है। हाँ
1: जी अब मुझे ये बताइए कि इतने सालों से आप संगीत की दुनिया में हैं और हारमोनियम पर आपकी उंगलियां बिजली की फुर्ती से चलती हैं।
0: बचती थी अभी एज के हिसाब से थोड़ी सी फ्लुएंसी कम हो गई,
1: जी
0: फिर भी अभी मैं लाइव प्रोग्राम बहुत बजाता हूँ,
1: हाँ
0: लेकिन पहले क्या मैं एज ए लीड बजाता था,
1: जी जी
0: तो अभी थोड़ा सा सपोर्टिव
1: हाँ
0: वो हो जाता है, थोड़ा सा अभी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना,
1: जी
0: कभी अटक जाता है थोड़ा सा।
1: संगीत की दुनिया में जो आधुनिक बदलाव हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या सब कुछ बहुत कृत्रिम होता जा रहा है?
0: ये तो होना ही था क्योंकि सब आर्टिफिशियल है, अभी एनालॉग रिकॉर्डिंग और डिजिटल में वो फर्क आएगा, लेकिन जैसे प्लस है उसके माइनस भी है।
1: जी
0: अभी जैसे समझो पहले पहले में जो कैसेट्स किया उस टाइम 10 गाने करने पड़ते थे, क्योंकि C60 का कैसेट होता था तब,
1: हाँ
0: 60 मिनट का कैसेट, तो कम से कम ये साइड 5 गाना वो साइड 5 गाना, लेकिन वो एक एक कैसेट हम लोग ने 4-4 दिन में मास्टर दिया है, मास्टर टेप, क्योंकि 2 ट्रैक, पहले तो 1 ट्रैक में रिकॉर्डिंग हुआ तो करता था फुल ट्रैक रिकॉर्डिंग, फिर 2 ट्रैक हो गए हैं, फिर 4 ट्रैक हो गए, उसी टाइम जो रिकॉर्डिंग के टाइम ही बैलेंस होते, 4 ट्रैक जब हो गए तो 1 ट्रैक पे रिदम पूरा बैलेंस हो जाता था, 1 ट्रैक पे मेलेडी बैलेंस हो जाती थी, तभी 1 ट्रैक वॉइस हो जाता था, तो मिक्सिंग को बहुत कम टाइम लगता था।
1: जी जी
0: अभी ये डिजिटल के हिसाब से क्या करते हैं, एक लाइन है तो उसका ऑप्शन 10 ऑप्शंस हो गए,
1: बहुत सारा पंच करते हैं
0: हाँ, फिर बाद में उनको ही पता नहीं चलता है कौन सा अच्छा है, हाथ लगा मेरे को
1: कोई बात नहीं।
0: तो फिर बाद में म्यूजिक डायरेक्टर ही कंफ्यूज हो जाता है, बाबा इसमें से अच्छा कौन सा है, लेकिन मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर को बोला था तुम्हें 10 ऑप्शंस लिए क्यों, एक लिया, दो लिया, तीन लिया,
1: जी
0: लेकिन उसमें से एक तो अच्छा है ना, तो
1: हाँ
0: दूसरे दो हटा दो ना उसी टाइम,
1: हाँ
0: तो 10 रखेगा, फिर बाद में तेरे को याद नहीं रहेगा कि कौन सा अच्छा है, तू सब सुनते रहेगा, एक गाने के मिक्सिंग को 1.5-2 घंटा लगना चाहिए, तो 6 घंटा 8 घंटा लगता है,
1: कई कई दिन लगाते
0: हाँ
1: हैं
0: फिर
1: आजकल।
0: एक दिन में एक गाना हो जाता है, और क्या।
1: अपा, अब बातचीत जो है वो लगभग आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और मैं चाहता हूं कि अपनी पसंद का कोई एक गाना हमारे सुनने वालों को समर्पित करें आप।
0: एक तो श्री रामचंद्र जी का वो ए मेरे वतन के लोगों, लता दीदी का,
1: वाह
0: श्री रामचंद्र के साथ मैंने काम किया 1 बरस, वो हमारे मुख्य थे जब वसंत देसाई गुजर गए
1: जी
0: 75 को, उसके बाद 1 बरस अण्णा ने, जिनको अण्णा बोलते थे सब इंडस्ट्री में, अण्णा ने वो उनके जगह काम किया है, और ये गाना यानी कुछ अलग लगता है गाना सुनने के बाद, वो इमोशंस अलग हो जाती है, तो वो गाना सुने,
1: जरूर, कवि प्रदीप की रचना है, इसे लता जी ने गाया था
0: बिल्कुल
1: और नेशनल स्टेडियम में जब दिल्ली में ये गाना लाइव हुआ था तो वो एक इतिहास है। अपा, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने अपने जीवन की इतनी सारी यादें हमारे साथ बांटी, नई पीढ़ी को चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: 2-3 चीजें हैं, एक तो डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, पैसा मिलता है इसलिए काम मत करना,
1: वाह
0: और काम करते करते पेशेंस चाहिए, टाइम पे आना, जो मैं करते रहा हूँ। अरेंजर हो गए तो उस हिसाब से काम करो, सिंगर हो गए तो मेहनत करनी पड़ेगी अलग तरह से, अपने गुरु को याद करो अच्छी तरह से, और सबको मैं शुभकामना देता हूँ और विविध भारती के सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया है आपने। जो कुछ मैंने बात की है, हिंदी तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है,
1: अरे आपने बहुत अच्छे से बात की है,
0: कोशिश की है और आपने सब करवा लिया मुझसे। यू तो ग्रेट है,
1: बहुत शुक्रिया। थैंक्स।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पा बढ़ावकर से यूनुस खान की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मह

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नर्मदा सपड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: तो भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन मैं उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग,
3: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना। सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शोभा जोशी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब की एक और रचना, संगीत शांतनु मोहित्रा का।

शोभा जोशी की आवाज में अभी आपने ये मिर्जा गालिब की रचना सुनी। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आइए सुनते हैं सादिक निजामी का ये नातिया कलाम, आवाजें अजीज नाजा, खव्वाल और उनकी हमनवा की, धुन मास्टर इब्राहिम की है।

को तर मांग लाए, झुकाने को सर संगे दर मांग लाए, ना कुछ मांगना था मगर मांग लाए, मदीने गए चश्मे तर मांग लाए, मसीहा से दर दे

जीते दे।

بخش حاوق گئے عرش پر درد دل کے مطابق غرض دیکھ لے کو تماشا عاشق

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब का संगीत, गैफ भोपाली की रचना, गायिका है परवीन सुल्ताना और फिल्म का नाम पाकीज़ा। हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी गाई ये ठुमरी।

0: यह आवाज थी परवीन सुल्ताना की।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए संत सूरदास का ये भक्तिपद, स्वर घनश्याम वासवानी का है।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बुन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सूरदास के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं संत मीराबाई का भक्ति पद। इसे आवाज दी है डॉक्टर मलिका बनर्जी ने।

0: फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं अख्तर नाज़मी का ये गुलाम।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
2: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई

0: आरोपियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता, आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आपको फिर से लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का।
2: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल में हम सुनेंगे उन्हीं गीतों को जिनमें है जिया, यानी दिल न लगने की कसक, दिल की बेचैनी और किसी अपने की कमी का एक भरपूर एहसास। तो आइए यादों की इस महफिल में आज दिल की उस बेचैनी को गीतों के साथ महसूस करते हैं। ठीक है, यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, स्वर लता मंगेशकर का। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। कार्यक्रम में अब सुनिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कमर जलालाबादी की रचना, स्वर आशा भोंसले का और फिल्म का नाम फागुन।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर का ये गीत। गीतकार गुल

0: लता मंगेशकर की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था आनंद। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा और धुन बनाई सलील चौधरी ने।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज की जो महफिल हमने सजाई है उन्हीं गीतों के नाम है जिनमें है इंतजार, तन्हाई और बेचैन दिल की आवाज। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम लाल किला। गीत को बहादुर शाह जफर ने लिखा और धुन SN त्रिपाठी की है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जेल यात्रा का गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दसा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा हुआ, गायिका चित्रा के एस और फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था छोटी सी मुलाकात। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब विशाल मिश्रा का संगीत, अक्षय त्रिपाठी के बोल। फिल्म का नाम है नोटबुक। गाने वाले कलाकार विशाल मिश्रा और एसिस कॉर्प।

यादों की महफिल कार्यक्रम की यह है अगली पेशकश। रविंद्र जैन का संगीत, आनंद पक्षी के बोल, आवाज भूपेंद्र की, फिल्म का नाम दासी।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
3: अब
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घूंघट का गीत, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन का गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

0: दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में ये थे कुछ ऐसे नगमे जिनमें दिल की वही बेचैनी सुनाई दी जब किसी के बिना कहीं हमारा मन नहीं लगता, किसी काम में जी नहीं लगता और बस उसकी याद साथ चलती है। तो चलिए इन्हीं गीतों के साथ आज की ये महफिल यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एहसास, किसी और कहानी और ऐसे ही कुछ खास नगमों के साथ। और इसी के साथ आज का यादों की महफिल।
1: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
2: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है।

0: भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किए गए हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आपको फिर से लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का।
2: और जनाब, इतना सफर जब कर ही लिया है तय, तो मेरे पास भी आइए। समंदर है, सपने हैं, रफ्तार है, और मैं तो बरसों से कहता आया हूँ ये है बॉम्बे मेरी जान। और तभी सब एक साथ बोल पड़ते हैं, तो फिर तय रहा, अगली बार जब कोई गीत बजे और उसमें किसी शहर या जगह का नाम सुनाई दे, तो सिर्फ गीत मत सुनिएगा, उस शहर की उस जगह की आवाज भी सुनिएगा, क्योंकि इन गीतों ने हमारी गलियों, बाजारों, रंगों, खुशबू और यादों को भी सभी की जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बना दिया है। तो समझ आई हमारी आज की इबारत, तो चलिए घूमने निकलते हैं इन्हीं शहरों की गलियों में।

जी तो हमने शुरुआत की है बीकानेर से। कभी गए आप इस शहर में? बताइएगा अगर आप बीकानेर गए हैं तो आपको कैसी लगी वहाँ की आबोहवा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन। और ये भी बताइएगा कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में आया है, है ना? एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बीकानेर में पला बड़ा हूँ। 1991 के अगस्त माह में बीकानेर आया तो यहाँ के लोगों की सादगी और स्नेहिल व्यवहार देखकर कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सफर आगे बढ़ा मगर रेडियो का साथ बराबर बना रहा। कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आकाशवाणी बीकानेर को अपने ट्रांजिस्टर सेट पर सुनते सुनते कब मेडिकल की पढ़ाई यानी MBBS पूरी हुई और PG भी हो गई पता ही नहीं चला। आकाशवाणी बीकानेर पर सन 2000 में जब पहली बार अपनी मौलिक क्षणिकाएं पढ़ी तो मेरा मन कितना पुलकित हुआ था यहां बता पाना बेहद मुश्किल है। इस शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में टाउन हॉल में अक्सर जाना होता था। आज भी जब उधर से गुजरता हूं तो गला रुंध सा जाता है। आज सफल हूँ, लोगों की सेवा चर्या में खूब व्यस्त रहता हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ है, मगर मन के किसी कोने में बीकानेर से दूर जाने की कसक आज भी है। आगे आप लिखते हैं कि यहाँ के रसगुल्लों, भुजिया, नमकीन के अलावा मेरी जिंदगी में बीकानेर का बहुत महत्व है। और आपने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी अभी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह, आज तो हम आपके साथ आपके शहर बीकानेर के साथ साथ शहरों की कई शहरों की सैर करने वाले हैं। बीकानेर की हवाओं में जहाँ राजस्थान की गर्मजोशी महसूस होती है, वहीं जयपुर के रंगों में राजसी विरासत झलकती है, बनारस की गलियां जीवन का दर्शन कराती हैं, तो लखनऊ की तहजीब मन मोह लेती है, आगरा का ताज मोहब्बत की कहानी कहता है, मुंबई तो सपनों की नगरी है ही, वहीं कश्मीर की वादियां हमें प्रकृति की सैर कराती हैं। यात्राओं से हम अपने घर लौट आते हैं लेकिन जब कभी किसी गीत में उसी शहर का नाम सुनाई देता है तो हम फिर से उस शहर की यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी गीतों में शहरों के नाम सुनकर सबसे ज्यादा खुश उन शहरों के लोग होते हैं जैसे बरेली, बनारस, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कश्मीर, आगरा, चेन्नई, जयपुर, भोपाल से लेकर लुधियाना तक का नाम हमने फिल्मी गीतों में सुना है। ज्यादातर कहानी के मुताबिक गीतकार अपने गीतों में शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि बात यह है कि ये गीत बहुत हिट भी हुए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड और संगीत का रिश्ता सदियों पुराना है। फिल्मों में गाने केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं होते बल्कि वे दर्शकों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त जरिया भी हैं। हिंदी सिनेमा की एक बेहद दिलचस्प और लोकप्रिय परंपरा रही है गानों में शहरों के नामों का इस्तेमाल, कभी किसी शहर की संस्कृति को दर्शाने के लिए तो कभी वहां के बदलते स्वरूप या इश्क को बयां करने के लिए गीतकारों ने शहरों को अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है। बहुत सुंदर विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत सुना था, आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था राजा और रंग। हमारे दो सवाल तो आने ही वाले हैं लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में सुनाई देता है, बताइएगा फटाफट। तो चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बीकानेर से थोड़ा आगे चलते हैं और वहां आता है क्या, जयपुर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है गहरी चाल।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भारत देश का हर शहर निराला और प्यारा है, किसका नाम ले किसका नहीं। वैसे तो हम अवध क्षेत्र के निवासी हैं, पर आत्मिक रूप से तो हम राजस्थान प्रांत से ही जुड़े हैं। राजस्थान के हर शहर की बात ही अलग है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, क्या बात है। आपने तो बीकानेर की मांड गाय की याद दिलवा दी, जो मांड गायिका पद्मश्री प्राप्त अल्लाह जलाईबाई ने ये रचना गाई थी, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। कभी सुनिएगा इस रचना को और बताइएगा कैसा लगा आपको ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भुजिया के लिए बेहद मशहूर है बीकानेर, और बीकानेर भुजिया शहर की वैश्विक पहचान बन गई है, मैं भी इसके स्वाद का दीवाना हूँ। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बीकानेर नहीं गया हूँ अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान का मुख्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, सर्विस के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 1990 में मैं बीकानेर पहली बार गई थी, क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बीकानेर के रास्ते जैसलमेर गया हूँ और तनोट बॉर्डर भी घूमा हूँ, ऊँट की सवारी और जीप सवारी भी किया हूँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह फिर से आज का ही कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ेगा जब हम बहुत सारे शहरों के रास्ते न जाने कहां कहां घूमने निकल पड़ेंगे, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो सुरीले सफर के गीतों के बाजार की रौनक खींच लाई हमें, और हम आज इस खास कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाने वाले हैं। तो भाई, हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि बीकानेर से जुड़ा और कौन सा गीत आपको याद आता है जहां पर बीकानेर का नाम लिया गया है। और वहीं अब हम आपसे एक दूसरा सवाल ये भी छोटा सा पूछेंगे कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें जयपुर का नाम और आया है इस गीत के अलावा भी। तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे सवाल जो हम गीतों के बीच में आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे दो सवाल जो हम हर बार आपसे पूछते हैं वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं।

तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या आपके शहर का नाम किसी फिल्मी गीत में आता है? बताइएगा, अगर आता है तो कौन सा गीत है वो, उसका जिक्र भी कीजिएगा। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप किसी खास जगह घूमने जाना चाहते हैं, आगे प्लान कर रहे हैं कि वहां जाएंगे और उस खास जगह को देखेंगे, या फिर कोई एक शहर जो आपको बेहद पसंद है उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक शहर, एक जगह का नाम, एक गीत, बस इतना ही, ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं को शामिल कर सकें। आप कहें तो सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। आप अपने उस शहर का नाम बताइए या उस गीत का जिक्र कीजिए जिसमें आपके शहर का नाम आता है, कौन सा है वो गीत? अगर नहीं आता है तो उदास मत होइए, बता दीजिएगा नहीं आता। और वहीं दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप जाने वाले हैं या जाकर आ गए हैं, या कोई खास शहर जो आपको बेहद पसंद आता है, या आप जिसे बहुत मिस करते हैं, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि बाकी का जीवन उस खास शहर में बिताएंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं किसी एक और जगह। इस गीत में संगीत है शंकर जयकिशन का, गीत हसरत जयपुरी का है, स्वर लता मंगेशकर का है, और ये फिल्म है जंगली।

हमारे एक श्रोता ने बताया है कि आपने पूछा कि जयपुर जिस गाने में और आता हो कौन सा गाना है। बिल्कुल सही लिखा आपने, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले।

0: एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे सपनों का शहर है मुंबई नगरिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपके साथ भारत दर्शन हो जाएंगे, हम कोलकाता में रहते हैं पर हावड़ा ब्रिज नामक मूवी बनी है। बिल्कुल बनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, दिल्ली की छलांग लगा के सीधे आप जयपुर से कश्मीर पहुंच गए। अरे दिल्ली वालों का दिल न तोड़े। हम किसी का भी दिल नहीं तोड़ते हुजूर, लेकिन हाँ अभी आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा कि कब आपके शहर में हम आएंगे या कब कहाँ हम पहुंचेंगे, ये तो गीतों के माध्यम से ही पता चलेगा ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जयपुर वो शहर है जहां बार बार जाने का मन करता है और संजोग से हम वहां पहुंच भी जाते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक स्थल हवा महल और आमेर का किला बार बार देखने जाती हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना हमारा शहर है। अच्छा क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आगामी 26 सितंबर से 28 नवंबर तक मैं प्रयागराज, वाराणसी और बोधगया की यात्रा पर जाऊंगा। बहुत सुंदर, आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, ऐसा हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं आता मेरे शहर ग्वालियर का नाम किसी भी गीत में, लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ बहुत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप खंडवा और कोलकाता के नाम लीजिए, आप पूरे भारतवर्ष घूम लिए, जितना सस्ता कोलकाता जमशेदपुर में भोजन मिलता है किसी शहर में नहीं मिलता। मेरे जमशेदपुर में भारत के हर तरह का वहाँ पर भोजन मिलता है। तो हम आएंगे ना आपके शहर, बिल्कुल आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने बचपन के शहर मुंबई और मेरी कर्म भूमि अजमेर की खासियत बताना चाहूंगा। अजमेर धार्मिक, ऐतिहासिक और शिक्षा के प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज हैं, धार्मिक सौहार्द की नगरी है, पुष्कर की विश्व प्रसिद्ध, संसार का एकमात्र बहुत ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थस्थल है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, राजस्थान की सबसे बड़े संत की चर्च है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है जहाँ खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कढ़ी कचौड़ी मिलती है और कढ़ी का ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा, सोन हलवा मिलता है और मुंबई मेरी जान है। लाल बाग, चा राजा, गणपति बप्पा के दर्शन अद्भुत लगते हैं और मुंबई के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़ा रोचक विषय है, हम कहीं भी रहें अपने नेटिव प्लेस को कभी नहीं भूलते। यूं तो हिंदी फिल्मी गीतों में बिहार की राजधानी पटना का जिक्र शायद ही कहीं आया हो, लेकिन एक गाना जरूर मेरे जहन में आता है जहां नायिका अपने सजना को ढूंढते ढूंढते पटना पहुंच जाती है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी, जी हाँ, बम्बई से गई पूना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अक्सर महसूस होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं कुछ समय बाद वो शहर हमें अपना सा लगता है। जितने शहर उतने शहर की खासियत, उतने ही उस शहर के स्वाद। यहाँ स्वाद का मतलब खाने से होकर भी खाने से नहीं है, दरअसल उस शहर की हवा में, मिट्टी में, लोगों में एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही नज़रिया देखने को मिलता है। जीवन के सबसे गहरे सत्य हम कहीं और से नहीं, अपने शहर में रहने वाले लोगों से पाते हैं और वही सच मनुष्य को परिपक्व भी करते हैं। हम कहीं भी जाएँ, किसी भी शहर में अपने शहर को लिए ही जाते हैं और जब लौटते हैं तो हमारा अपना शहर बाहें पसारे हमारे स्वागत के लिए तत्पर खड़ा मिलता है। बहुत सुंदर। तो चलिए, बात चली थी स्वाद की, तो फिर ये स्वाद तो हम कभी नहीं भूलते हैं, यानी पान, है ना। तो चलिए, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन का ये गीत सुनते हैं और पहुंच जाते हैं कहां, बनारस। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी, और हाँ, हमारे सवालों का जवाब भी देते जाइए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे जबलपुर का शहर का नाम भी ये गीत में आता है। फिल्म जानी मन इलाहाबाद में पैदा हुई, में जबलपुर में पली। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लिए गीत आना भी बाकी है। अच्छा बताइए, दिल्ली के लिए कौन सा गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए, जरा सोचिएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म है हम है राही प्यार के, बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। ये गाना इन्हें पसंद है और इनके शहर का नाम इसमें आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में घूमने का मन है मेरा। एक श्रोता लिखती है कि मैं लखनऊ की हूँ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और ऐतिहासिक नवाबों का शहर है। यहाँ का चिकन वर्क देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। भूल भुलैया बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा आदि बहुत प्रसिद्ध जगह हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नहीं, मेरे शहर का नाम किसी भी गीत में नहीं आता। हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरे शहर में भी मशहूर फिल्म बंदिनी मेरे भागलपुर में ही इसकी शूटिंग हुई थी। मैं तो लगभग सारे शहरों की सैर, हर एक जगह की कुछ ना कुछ खासियत करके लौटी हूँ। जैसे बनारस की चाट भी जो है, और लस्सी और पान बेहद पसंद आता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड में कई बार चीज़ें संयोग से हिट हो जाती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिल्में मिलने, फेमस होने और यहाँ तक कि फिल्म में होने वाली तमाम बातों से उनके किस्से जुड़े होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन की सबसे फेमस फिल्म डॉन का है, जो अपने समय की बहुत ही क्लासिक फिल्म है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि न जाने आज आपका प्रवाह किन किन शहरों से गुजरते हुए समुद्र में मिलेगा। तो आप सुनिए ना कार्यक्रम, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से होते हुए हम अंततः मुंबई पहुंच जाएंगे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कभी गांवों की भी चर्चा कीजिएगा, आपके तमाम श्रोता गांवों में बसते हैं और विविध भारती को बहुत समय से पसंद भी करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, और हर बार हम एक नई थीम पर काम करने का विचार रखते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को हर थीम पसंद आए, और ऐसा ही प्रयास आगे भी होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आशा और विश्वास रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप में से किसी का झुमका तो नहीं गिरा था यहाँ?

0: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो चलिए, बरेली की सैर हो गई है। आशा भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेरा साया, राजा मेहदी अली खां की बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। हमारे सवालों के जवाब हमारे श्रोता लगातार हमें दे रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ साथ आप भी इस यात्रा पर निकल चुके हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है और मैं तो सबसे खतरनाक शहर से हूं जहां से अजय देवगन अभिनीत प्रकाश झा निर्देशित फिल्म गंगा जल बनी थी, भागलपुर से, और अभी पुणे में हूँ, यानी मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी छत्रपति नगर में से 600 किलोमीटर दूर तेलंगाना राज्य को हैदराबाद शहर में बेटी और जमाई सा के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, हमारा सवाल था कि आप कहीं बाहर हैं शहर से तो बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आप अपने घर से कहीं बाहर बेटी के घर गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हम पान नहीं कुछ और खिलाएंगे, पोहा जलेबी और समोसा खिलाएंगे और अपने घर का खाना भी, बस आपको आना होगा और अंत में हमें पान भी खिला दीजिएगा ना। आपके ये हाथ का बना खाना तो हम जरूर खाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर में बजने वाले गीतों में देश के विभिन्न शहरों के नाम शामिल हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में प्रादेशिक फिल्मी गीत शामिल नहीं हुआ करते, फिर भी साल 1963 में आई गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती की एक कॉमेडी गीत का उल्लेख कर रहा हूँ जो आगा और अभिनेत्री शम्मी जी पर फिल्माया गया था और आवासी कमल बारोट और मन्ना डे जी की। इस गीत में गुजरात के कुछ शहर के नाम शामिल थे। गीत के शब्द में हीरोइन कहती है झट जाओ चंदन हार लावो घूंघट नहीं खोलू, हीरो कहते हैं नाणा ना नखरा बदा, नाणा नासो नाद तू मांगवानू नहीं मुके सुमने मुकाविश अहमदाबाद। जवाब में हीरोइन कहती है वड़ोदरे लावो लऊ न करूं सूरत मालेर हार चढ़ावी डाकमा। अरे वाह, क्या बात है। और इसके जवाब में हीरो बोलता है कि भावनगर भागी जईश रखड़ीश हूँ राजकोट पण तारी साथे नहीं रहूं मने मंगाविश तू लोटरे। और इस तरह से आप बताते हैं कि इस गीत में गुजरात शहर का नाम आता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत गहराई से इस गीत को ढूंढा है और हमें अवगत कराया है इस नए गीत से। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब और रोचक विषय है, आज हम ऐसे शहरों का आनंद ले रहे हैं जहां कहीं उठकर जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर में और उस पर सभी श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से कार्यक्रम में चार चांद लग जा रहे हैं, हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है। सच मानिए बहुत शानदार माहौल बनता है, मन खुश हो जाता है और बाकी का दिन बड़े अच्छे से बीतता है, बहुत बढ़िया, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सुनने का बहुत मन करता है और आज भारत के उन कोनों की हम सैर कर रहे हैं जहां की हवाओं में ही रोमांस और खूबसूरती और यादों की मधुर धुनें घुली हुई हैं। सभी सहयात्री अच्छी तरह से तैयारी कर लें क्योंकि आज हमारा सफर भारत के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन पर चल रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब चलते हैं कहां, सुनिए इस गीत में, बताइएगा किस ओर ले जाता है ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
0: आगरा के लिए हम ये गीत नहीं लेकर आए हैं भाई, दिल्ली वालों के लिए लेकर आए हैं। अभी हमारे श्रोता ने कहा कि अरे आप तो भूल ही गई और आगे निकल गई। चलिए सुनते हैं इस गीत में, और प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, रेखा भारद्वाज विशाल ददलानी की आवाज है, फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी।

हमारी श्रोता ने कहा है कि हमारा भारत देश इतना विशाल और महान है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल हैं, कि उन सबके दर्शन करने के लिए एक जन्म तो कम ही पड़ेगा, मालूम नहीं कितने जन्म लेने होंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काम करते वक्त ये प्रोग्राम सुनते हैं आज, क्योंकि मेरे राज्य का जो गाना है वह बहुत प्रसिद्ध है। मैं बरेली यूपी से हूँ और वह जो गाना मुझे खाने की बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्रसिद्ध है। आपने खाने लिखा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो। और आपने लिख भी दिया है कि मेरा साया फिल्म का जो गीत आपने सुनवाया था वहीं से हैं आप। और वैसे तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में जन्मी पली बड़ी हूँ और मुझे मुंबई शहर बहुत प्यारा लगता है और गाँव तो अपना है ही। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं विदेश में भी कई जगह घूमी हूँ और आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन में हूँ और जर्मनी के कई शहर में भी घूमी हूँ। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पाप और पुण्य में जोधपुर का नाम आता है, जो मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं एक श्रोता लिखती है, जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा, और उन्होंने लिखा है कि नहीं, मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे, स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बरेली से हूँ और मेरा बरेली में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में ये गीत बहुत मशहूर है। वहीं एक श्रोता लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा, जिसे हम बड़ौदरा, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है, अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन हमने अपने आपके शहर का जिक्र कर दिया है। और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवाया उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना। जैसे दिल्ली 6, दिल्ली 6 फिल्म है, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गए लखनऊ?

तो कैसी लगी आपको लखनऊ की सैर? बताइएगा, हालांकि वक्त बहुत कम है और इतनी टिप्पणियाँ, इतने विचार हमें मिले हैं कि लगता है कैसे सबको पढ़ें। बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन समय सीमा को हम लांग नहीं सकते। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आती है कि आज हम लोग अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि मानसिक मनोरंजन हेतु भी देशाटन पर गीतों के माध्यम से सुरीला सफर करने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम का यह वास्तविक नाम आज भली भांति चरितार्थ होगा, जिसके फलस्वरूप हम शहरों में ही नहीं अपितु पहाड़ की भी सैर कर लेंगे। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं शादी के बाद कानपुर आई। साउथ के बहुत से शहर जैसे बेंगलोर, मद्रास, मैसूर, ऊटी, कोडई, कैनाल आदि बहुत से शहर इन्होंने देखे हैं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई ही देखने की और विविध भारती में आने की बहुत अभी ख्वाहिश बाकी है। और भी आपने लिखा है कि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, पुणे देख चुका हूँ, कोलकाता में 8 साल रह भी चुका हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इंदौर शहर का नाम भले ही फिल्म में कम आता हो, पर यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि मैं तो बहुत छोटे शहर पोरबंदर में रहती हूँ, पर इसका नाम बहुत बड़ी हस्ती से जुड़ा है। जी हाँ, समुद्र के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और यही एक कारण काफी है। लोगों को यहाँ आने के लिए दूसरा शहर से समुद्र काफी नजदीक होने के कारण कभी भी बीच का आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं। खाने में यहाँ की खाजली फेमस है, जिसका स्वाद खाजा से मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, आपने तो खाने की याद दिला दी हमें। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम आने वाले हैं। कहां? अपने शहर मुंबई, आमची मुंबई, है ना। तो ओपी नैयर का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज है। फिल्म का नाम CID।

0: जान।
1: जी हाँ, बॉम्बे मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। तो आप मुंबई आए होंगे और अपने अनुभव किसी अन्य कार्यक्रम में साझा कीजिएगा और हम उसका जिक्र इस कार्यक्रम में जरूर करेंगे। फिलहाल अब बहुत हो गया, खूब घूम लिए, है ना, क्योंकि अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि आपके साथ इस सुरीले सफर को और लंबा ले चलें। तो चलिए यहीं तक आज का ये सफर। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ समय में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: दर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
1: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और

0: उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
1: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
4: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
5: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
2: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर

0: बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
2: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोताओ, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। दोस्तों, चलिए आपको पुनः लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का।
5: दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, युगल स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के, फिल्म का नाम धूल का फूल।

0: वेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में ये था मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरे सनम।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म उजाला का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर हैं, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के बोल सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
3: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
2: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
4: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
2: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जाल। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जब मैं लोगों को हंसाता हूं तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश, नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी की बोल, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: मोहम्मद रफी का गाया अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दसा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती, तो आरती तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं।
2: बिल्कुल। और मंजरी जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: क्या बात है, और बताओ कैसे?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहे हैं। तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता।
2: बिल्कुल, जब कोई जाता है ना जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना।
1: बिल्कुल दुखता है,
2: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे।
1: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए हैं उन पर बात कर लेते हैं। हाँ। कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है
2: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं।
1: हाँ, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज रूम होता है, तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती। तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं उसकी छोटी छोटी सी बातें संदेश में लिख कर भेज सकते हैं। तो
2: बिल्कुल लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा करते हैं या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं, ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में। सोचो एक अंतरिक्ष है एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है जिनका कोई पार नहीं, और साथ ही इतनी रहस्यमयी दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो, पता नहीं कब से शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है उसकी तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है अभी भी, हम चौंक जाते हैं।
1: इतनी अद्भुत है, मतलब अद्भुत दुनिया ही है।
2: बिल्कुल,
1: और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है, कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती है और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
2: कहते हैं ना जो इंसान ने वो जो सारे तत्व हैं पृथ्वी के उससे मिलकर बनाए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी होती हो।
1: बिल्कुल, है ना। तो इस पर बातें करेंगे और मुझे कुछ कहना है।
2: हाँ।
1: कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि दो महीने पहले एक हफ्ते पहले कि आज सुबह सुबह रूठे,
2: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती से रूठ गई,
1: तो इस तरह के कुछ अपनी यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है तो उसमें बात करने हम लोग करने वाले हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
2: और ना? जब कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
1: चलो तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं समुद्र की सैर के लिए जाते हैं या समुद्र के आसपास जाते हैं तो वहाँ की जो एक हवा आती है दूर से आती हुई, एक शीतल सी हवा होती है, ठंडी हवा होती है, कुछ समुद्री हवा का अलग एक अलग सी एक सुगंध होती है, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और पानी देख कर तो वैसे भी लगता है कि बस अपने पैर डाल लो उसमें, आगे लहरों के संग थोड़ा सा मस्ती कर लो, है ना। तो हमारे साथी ने एक संदेश में लिख कर भेजा है, तो पहले संदेश उनका ले लेते हैं। लिखते हैं कि लहरों का एक सुहाना संग, अतः नीला विशाल रूप, क्षितिज जहाँ आकर झुकता है, खिलती जहाँ सुनहरी धूप, रेत पर आकर रुक जाती है, गीत सुनाती चंचल धार, गहराई में छिपे रहस्य सिखाती समता और प्यार। बहुत सुंदर सी लाइनें आपने भी लिखकर भेजी हैं। और पता है दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना जानो उतने ही गहरे होते जाते हैं। और सच पूछो तो हमने जब से अंतरिक्ष को खोजना, उसे जानना शुरू किया, तब से या शायद उससे पहले भी हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र, जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका। आरती,
1: बिल्कुल। और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे, बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल। और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में, जैसा तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।
1: हाँ।
0: समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु, शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है, जेलीफिश वगैरह जो रहती है, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है, और बहुत ज़्यादा जो गहराई होती है वहाँ पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंसिस, यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रा सोच कर देखो ना आरती, कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर उतर आए, जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है? समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं।
1: बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण आवास है इनके, और लाल, पीले, नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो हैं वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं, और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहाँ पर। और समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज लिया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं, अभी खोज भी नहीं पाए उनको।
0: और देखो हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की सैर कर चुकी हूँ, बोट क्रूज और स्टीमर आदि से, कई जगह गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हूँ। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहाँ स्टीमर रुकता था वहाँ की जगह पर उतरकर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताज़ा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी हैं, इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित ही हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से और जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनको, उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
1: बिल्कुल, पहली और बात तो। सबसे बड़ी चीज है जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना, तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना, वो जीवन चक्र प्रभावित होगा पूरी तरीके से।
0: सही बात है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंकें, समुद्र तटों को गंदा ना करें, और सबसे जरूरी, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तो आरती हाँ। देखो हमारे साथी क्या लिखते
2: हैं
1: बताओ।
2: हाँ, तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार हैं। जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय जीवंत और अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो

0: तलाश किया है तो केवल 5 से 10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं, और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है, लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल, जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है, से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियाँ, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियाँ इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
0: और साथ ही एक साथी जो लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वहाँ का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहाँ ऐसे बायोल्यूमिनेंट्स जो जीव होते हैं वो रहते हैं, जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं। मतलब जहाँ पर पानी क्या सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, इसका 60 से 80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है, जो इतनी विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
0: बिल्कुल, और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहाँ लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहाँ पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा है। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी, जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं फिर।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुँचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौने की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बारले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
1: बिल्कुल। और उषा बारले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बारले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बारले ने वर्षों के मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बारले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं। और धीरे धीरे उषा बारले की आवाज़ बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज़ अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुँच चुकी थी।
0: उषा बारले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल। उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
0: इतने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
1: बिल्कुल।
0: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत जरूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दे तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
1: बिल्कुल। आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
0: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
4: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि इन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई है, ऐसे मन अनुभव लिखे हुए हैं।
3: तो हमारे साथी देखो, एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे, मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
4: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझ में एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती हैं। मतलब ये
3: है?
4: चाय पीने के लिए गाने गाके
3: मना लेते हैं।
4: बिल्कुल मना लेते हैं।
3: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरी की पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंदु की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है। हम वेद भारती से रूठ

0: जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो। दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते, इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
1: नए भी बजते हैं,
0: नए
1: पुराने भी
0: बजते गाने
1: बजते
0: सब
1: हैं।
0: बजते हैं, और
1: हाँ
0: आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं,
1: हाँ
0: तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलिया करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारे वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम कब, किससे और कितना रूठना चाहिए हमें। गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है, और जीवनसाथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्त, दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
1: और साथ ही एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा, और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हों और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
0: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसे रूठना तो चलता रहता है ज़िंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फ़ोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने
1: हाँ,
0: मैसेज नहीं किया तो रूठ
1: किसी ने हमें कुछ
0: गए
1: मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ
0: तो हम
1: गए।
0: रूठ गए, है ना।
1: एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब, किससे रूठें। किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हों सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी
0: जब
1: वो लिख
0: इन्होंने
1: के भेज दिए हैं।
0: गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
1: बिल्कुल
0: देते
1: सुनवा
0: हैं।
1: देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ कि रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
3: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये ज़रूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराज़गी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहां प्रेम है वहां अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहां अपनापन है वहां छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखना चाहिए।
2: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई, विचार, जीवन, रिश्ते और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहाँ कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं, बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी जो लिख के भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखें, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटें, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखें और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीजें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती जबकि फ्रिज में कई दिनों तक

0: चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें फ्रिज में। फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी ख़राब जाते हैं और कई फल जो हैं वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं, तो सब्जियां जल्दी ख़राब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
1: ठीक है, तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं, हमारी माँ तो उसमें सब्जियाँ ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं, नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती हैं और बहन को डांटने लगती हैं। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
0: जी।

0: तो देखो, बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त
1: बिल्कुल
0: पर हो गया है,
1: दूर
0: तो
1: पास
0: हाँ
1: सारे श्रोता रहते ही
0: जी,
1: हैं।
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और
0: और
1: आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठ।
2: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले रहे थे विविध भारती का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र के विभिन्न एमडी, एमएस, डीएनबी, डॉक्टर, एनबी 6 वर्षीय पाठ्यक्रम और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और परिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इससे पहले रोशिबिना देवी ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष डबल्स टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक सुनिश्चित हो गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोता, अब आपको पुनः लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलजार साहब?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा ना जैके पार फिल्म का, आप आने के बोल रहे थे कौन दिशा में लेके चला रहे बट भैया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की। रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माँ आ जाती है ना, आखिरी माँ का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर, आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी
0: अच्छा बताइए, सीहोर की क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, पर के 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर। बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती हैं वहाँ पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713, और जो सरबती गेहूँ रहते हैं ना सर, उसमें पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूँ और हमारे क्षेत्र का गेहूँ सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूँ होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूँ होता है और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा
1: जी
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं।
1: सर, जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर। मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, और गाने के बोल हैं मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस सुनना है सर जी?
0: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज
0: जी
1: पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी,
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नगमे में, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं, तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: आपको बात
0: शुक्रिया।
1: करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी जी जी तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी यादों के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम। और दोपहर में 1 बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल, दुआएं बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
0: जी जी
1: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
0: जी जी जी
1: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
1: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है और घर पे भी चलता ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये
1: हाँ
0: बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
1: सर, नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनका क्या कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए
1: हाँ
0: पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस भाई, ठीक हो आप? सर
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गाँव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है
0: अच्छा,
1: बहुत। हाँ
0: और वादिय कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं?
1: सर हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं।
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दो पथरी है यहाँ हमारा वो इलाका है, वहाँ में नजदीक है इस गांव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं। अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग,
0: जी, मौसम की पहली
1: बहुत
0: बर्फबारी हो गई हमने सुना है।
1: ना, अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए।
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है, आनंद
1: हाँ
0: बख्शी
1: बिल्कुल,
0: के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादिय कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये कुकवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: जी ककवासा अपना जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना, वो जामनेर वाली जी रोड गए ना, जहाँ पर ही है जी, पास में पड़ता है अपना गांव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके
1: आप
0: गांव
1: बता
0: की क्या
1: जी,
0: हालत है?
1: गांव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है, हमने सुनो।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी तो।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गाँव की हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है,
0: हाँ, तो तैयारियां वैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा,
1: सर जी पहली बार बात हो रही है, यूनिस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप।
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम जो, बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो था तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो,
0: और अभी
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और
1: बहुत
0: रेडियो चालू हो गया।
1: जी। सर जी विविध भारती अपरा तो चलता ही रहता है जी, मान लीजिए सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज?
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्ती है सर। किसका
0: अच्छा,
1: नाम ले?
0: ऐसा सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट हो गया उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा आज।
0: बहुत साल, मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा,
0: जी
1: तब से फोन लगा, लेकिन लगाई भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मुझे।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजयपथ, तो उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह ये तो अजय देवगन का गाना है
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर बिल्कुल।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजयपथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं, मनचाहे प्रोग्राम से इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मनचाहे गीत और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुंच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की टू मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला विंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है।
3: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज चुके हैं और इसी के साथ आज की हमारी पहली सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे जल्द मिलेंगे दूसरी सभा में शाम के 6 बजे। तब तक के लिए मुझे यानी सुवर्णा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। हम सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं आज की दूसरी सभा में।

श्रोताओं, आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपसे कुछ समय बाद यानी कि 6:05 पर पेश करेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत मार कार्यक्रम। आज मार कार्यक्रम के तहत आप आनंद ले पाएंगे मार आधुनिक गीतों का। गायक कलाकार होंगे लाल दिन थांग ट्रिक और उनके साथी। जेमी कार्यक्रम के तहत आपको सुनवाएंगे निंगिले क्वामे और उनके साथी कुछ जेमी लोकगीत। समय रहेगा 6:25। 6:45 पर आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे सुंदर आंचलिक बातोरी।

श्रोताओं, 7 बजे का समय रहेगा डिमासा कार्यक्रम का। आज डिमासा कार्यक्रम के तहत आप सुन पाएंगे डिमासा लोकगीत। गायक कलाकार होंगे सिरी लेडी लंगथासा और उनके साथी। कार्बी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे मेलिना क्रॉपी और उनके साथी कुछ कार्बी भक्ति गीत। समय रहेगा 7:20। 7:40 का समय रहेगा हमारे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों की आखिरी पेशकश यानी कि कुकी कार्यक्रम का। आज कुकी कार्यक्रम के तहत आप आनंद ले पाएंगे कुकी आधुनिक गीतों का लुत्खोलाल चोंगलोय और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, 8 बजे का समय रहेगा हमारे किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी का। आप सुन पाएंगे इसका AIR गुवाहाटी प्रोडक्शन। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या। श्रोताओं, 9 बजे आप सुन पाएंगे गजल। आज गजल के अंतर्गत आप सुन पाएंगे गुलाम अली के कुछ कलेक्शंस का।

और श्रोताओं, आज की आखिरी पेशकश होगी आपका पसंदीदा कार्यक्रम चित्रगीत। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस सभा की शुरुआत करते हैं मार कार्यक्रम के अंतर्गत। आप आनंद लीजिए कुछ मार आधुनिक गीतों का, लाल दिन थांग ट्रिक और उनके साथियों की आवाज में।

स्वतः इसी गीत के साथ मार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब समय हो चुका है जेमी कार्यक्रम का, आनंद लीजिए जेमी लोकगीतों का निंगी लेकवा में और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ जेमी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब समय हो चुका है संध्या रांचोली बातोरी का, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

श्रोताओं, इस गीत के साथ डिमासा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब समय हो चुका है कार्बी कार्यक्रम का। आनंद लीजिए कार्बी भक्ति गीतों का, मेलिना क्रॉपी और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्बी कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। आज कार्बी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको सुनवाया कार्बी भक्ति गीत मेलिना क्रॉपी और उनके साथियों की आवाज में। अब समय हो चुका है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों की आखिरी पेशकश यानी कि कुकी कार्यक्रम का। आनंद लीजिए कुछ कुकी आधुनिक गीतों का लुटखोलाल चोंगलोय और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कुकी कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। अब समय हो चुका है किसान वाणी कार्यक्रम का। आप किसान वाणी का सुन पाएंगे आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रसारण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए कुछ फिल्मी गीतों का।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ समय बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक

0: नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
2: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
0: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
5: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
3: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
6: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
3: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
7: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
8: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
9: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है, उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं, उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
3: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
10: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
11: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
10: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
3: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
13: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
12: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो चुका है गजल का। आनंद लीजिए गुलाम अली के कुछ बेहतरीन कलेक्शंस का।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ गजल यहीं पे समाप्त होते हैं।
1: आपकी गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अब समय हो चुका है चित्रगीत कार्यक्रम का, आनंद लीजिए कुछ फिल्मी गीतों का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और इसी के साथ आज की दूसरी सभा यहीं पे समाप्त होती है। पर कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।